मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 11 मई 2026। समय प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब प्रारंभ होते हैं हमारे आज के प्रसारण।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं अब हिंदी समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के ठीक बाद एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर हम रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजरतेताली संचार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इखलो में वो को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोफ को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोपोंगनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है चिंतन। स्वयं को शामिल किए बिना आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते और स्वयं को शामिल करने के बाद आप असफल नहीं हो सकते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अभी आप सुन रहे थे चिंतन। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जब हम सच्चे मन से अपने परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं तो वो हमें हर संकट से उभार देते हैं। तो आइए नमन करें अपने परम पिता परमेश्वर।

जब हमारा मन मोह माया के बंधनों से छल कपट से रहित होता है, तभी हमारा मन पूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति में लग पाता है। क्योंकि जब नीयत अच्छी होती है तब ही भक्ति अच्छी होती है।

ज्ञान, उपासना और कर्म ये ईश्वर प्राप्ति के तीन अलग मार्ग नहीं बल्कि भक्ति भाव को जगाने का और अपने प्रभु को याद करने का एकमात्र तरीका है।

जब हमें अपने इष्ट पर विश्वास होता है तभी हम अपने आप पर विश्वास कर पाते हैं और उस समय कठिन से कठिन समस्या को भी हम आसानी से पार कर लेते हैं।

इसी के साथ संपन्न होता है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, प्रस्तुत है वाणी जयराम और साथियों की आवाजों में। रामचरित श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग।

पुत्र वेओ की कल्पना ने महाराज दशरथ से मानो उनकी वाक शक्ति छीन ली है। उनके मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ रहा है कि जगत में चाहे उनका सुयश न हो जाए, पूर्व पुण्यों द्वारा अर्जित स्वर्ग भले ही ना मिले, बस राम किसी भी तरह उनकी आंखों से दूर ना हो। किंतु श्री राम को पिता के वचन के मर्यादा का पालन करने के लिए अपने वन गमन की बात अत्यंत तुच्छ सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज आते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे। उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकई के अपशब्द कह रहे हैं, जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है।

कवि शायद सत्य ही कहते हैं कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बातें हम आज कर करेंगे बैंगन फसल की देखभाल इसके बारे में। किसान भाइयों, बैंगन साल में तीन बार बोया जा है। सर्दी की ऋतु खातर इसकी बिजाई जून जुलाई में हुआ है, गर्मी की ऋतु खातर अक्टूबर नवंबर में हुआ है, और बारिश के मौके की इसकी बिजाई मार्च के महीने में हम करा हाँ। 200 ग्राम बीज एक किलो खातर हमने चाया करे, क्यारी बना के उस माह में इसकी प्यो दिला दें हाँ। बढ़िया किस्म लेकर आ हाँ, खेत ने बढ़िया डल बावा समारा हाँ, 10-12 गाड़ी गोबर की खाद की सलाह दी जा है, नाइट्रोजन की मात्रा, पोटास, फास्फोर सारा कुछ इसमें डाल के जब हम इसकी बिजाई करा हाँ। फिर इसमें हानिकारक कीड़े आ जाए हैं, जरूरी तो नहीं आने, लेकिन जिस भाई का आ जाए हैं तो उसने फिर इसका जब्ता भी करना पड़े है। इसमें एक तो अरहर तेल आ जाए है, यो पौधे का रस ने चूस ले है, पौधा कमजोर सा पड़ जाए जो कर जड़ा जड़ा हो जाया करे, तो इसकी खातर कई दवाई हूँ तो, लेकिन सलाह यह दी जाएगी कि जो हल्की दवाई है ना उनका प्रयोग करें, और जब दवाई का छिड़काव करें, कोई सी भी दवाई का छिड़काव करें, उससे पहले जितने भी फल सब्जी जो मारे हैं लाग रहे हैं वो सारा तोड़ लें, पहले बाजार में बेच लें, और फिर छिड़काव के कम भी 10 दिन के बाद तोड़ाई का काम करें। 300-400 मिलीलीटर मेलाथियन दवाई ले लें 50% ताकत की, 200-250 लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर दें। एक छिड़काव तो बात नहीं बनती तो दूसरा भी छिड़काव कर सके हैं। सफ़ेद मक्खी का भी प्रकोप आ गया है, जब इसकी दिक्कत आ जाए तो कोई दूसरी दवाई छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, चाहे अड्डा बूंदी भी इस मास का है बताऊँ मैं, जो हमने अरे तेल खातर दवाई का छिड़काव कराया है उसका छिड़काव हम कर सका हाँ। या फिर जिस भाई ने कर दिया अरे तेल खातर तो सफ़ेद मक्खी आ जा चाहे फिर अड्डा बूंदी आ जा, तो दोबारा छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं बनती, कोई और दवाई का बदलाव ना करें, उस दवाई तक काम चल जाएगा। मेलाथियन दवाई बताई थी 50% ताकत की, और लगभग 250 लीटर पानी तो ले लें, क्योंकि फसल को तर करना भी बहुत ज़रूरी हो है। तना छेदक और फल छेदक सुंडी भी आ

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी ह्यः तेलङ्गाणाराज्ये प्रायः 400-900 कोटिरूप्यकाणाम् आधारभूतसंरचनानाम् औद्योगिकपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्रसर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: इदानीन्तन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्षश्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल इन्धनेन सह इथेनाल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रथमस्य ज्योतिर्लिङ्गस्य श्रीसोमनाथ महादेवमन्दिरस्य पुनर्निर्माणस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी ऐषमः श्रीसोमनाथ अमृतपर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्रीमोदी भगवतः श्रीसोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकञ्च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिमबंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्यसचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पञ्चमन्त्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य संभावना वर्तते। इमे च शनिवासरे

0: परेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमंत्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मंत्रिमंडले भाजपा दलस्य निर्वाचन प्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम् अन्नपूर्णा भण्डारः राज्य सर्वकारीय कर्मचारिणां कृते सप्तम वेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्य विषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मण्डल दण्डाधिकारिभिः पुलिस इति आरक्षि अधीक्षकैः विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमन्त्रीपदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतनसर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपानेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायकदलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा घटबन्धननेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिकरूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त बिश्वशर्मणे नूतनमन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहणसमारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सामहाविद्यालयस्य क्रीडाङ्गणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी, केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, भाजपाध्यक्षः नितिन्नवीन इत्यादयः भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को

कर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

युवा संसार कार्यक्रम युवा साथी सुनेंगे शाम 5:30 बजे, जिसके तहत आज फोन इन कार्यक्रम हेलो जीनियस प्रसारित होगा।

कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर मंगल राम के साथ धान की नर्सरी तैयार करने में सावधानियां विषय पर बातचीत किसान भाइयों को सुनवाएंगे शाम 6:20 पर।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के तहत हमारी पहली प्रसारण सभा में अब से थोड़ी देर बाद सुबह 7:15 पर आपको सुनवाएंगे दीपा शर्मा का सितार पर बजाया राग गुजरी की तोड़ी। इसी कार्यक्रम के तहत रात 10 आप सुनेंगे दीपा शर्मा का ही सितार पर बजाया राग श्याम कल्याण हमारी तीसरी प्रसारण सभा में।

फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे। हमारी पहली प्रसारण सभा में सुबह 9 बजे पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, दोपहर 1:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत में, फिल्म संगीत कार्यक्रम के तहत शाम 7:30 पर एक फिल्म से कार्यक्रम में रात 9:15 पर और रात 10:30 कार्यक्रम मन चाहे गीत के अंतर्गत। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आपको सुनवाएंगे दीपा शर्मा का सितार पर बजाया राग गुजरी की तौड़ी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आपने सुना दीपा शर्मा का सितार पर बजाया राग गुजरी की तोड़ी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे।

श्रोताओं, आज हम सब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मना रहे हैं। जब भारत देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों, तकनीकी प्रगति और इन उपलब्धियों के पीछे के लोगों को जश्न में शामिल करना इस दिन का उद्देश्य है, ये दिन हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी केवल प्रयोगशालाओं या मशीनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वास्तव में ये सशक्तिशाली उपकरण हैं जो दैनिक जीवन को बेहतर बनाते हैं, हमारी दैनिक जीवन में खुशहाली लाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करते हैं और देश के भविष्य को आकार देने में हमारी सहायता करते हैं। साल 2026 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस एक बार फिर भारत को अपनी उल्लेखनीय यात्रा पर विचार करने का अवसर दे रहा है। दशकों से देश आयातित प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता से आंतरिक अनुसंधान, डिजिटल नवाचार, रक्षा प्रणालियों और उद्यमिता में एक मान्यता प्राप्त शक्ति के रूप में हमारा देश उभरा है। भारत में 1998 के ऐतिहासिक वैज्ञानिक उपलब्धियों को याद करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई 1999 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। ये दिन 11 मई 1998 को हुई ऐतिहासिक उपलब्धियों की श्रृंखला से जुड़ा है। उस दिन भारत ने राजस्थान में ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण 2 परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न किया, जिससे भारत एक परमाणु सक्षम राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ और वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षमताओं की मजबूती को प्रदर्शित किया। उसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित स्वदेशी हल्के विमान हंसा 3 की पहली सफल उड़ान भी हुई, जो भारतीय विमानन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। भारत ने त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया, जो स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति को दर्शाता है। इन उपलब्धियों ने मिलकर 11 मई को तकनीकी आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना दिया। इन परीक्षणों ने भारत की वैज्ञानिक क्षमता को रणनीतिक आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। ये दिन मनाने का हमारा उद्देश्य उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, नव प्रवर्तकों, उद्यमियों को योगदान को महत्व देना है, जिन्होंने आधुनिक भारत की संरचना और निर्माण में अपना योगदान दिया। इस दिन का उद्देश्य हम सब एक नई दिशा में चलें और नवाचार की ओर कदम बढ़ाएं। हर साल नए विषय के साथ इस दिन को हम मनाते हैं। इस साल का हमारा विषय है समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार। इस वर्ष के समारोह में होने वाली चर्चा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष नवाचार, गहन प्रौद्योगिकी अनुसंधान और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। श्रोताओं, ये दिन भारत भर में सरकारी संस्थाओं, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, निजी कंपनियों द्वारा मनाया जाता है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे समारोहों का नेतृत्व करता है। ये दिन दिखाता है कि हम कितने सक्षम हैं, हम हर तरह से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बेजोड़ मेहनत और योगदान दे रहे हैं।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोताओं, विज्ञान ने मानव जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है। ये मानव समाज की प्रगति का आधार है। इसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना भी हम सब नहीं कर सकते। विज्ञान के विकास ने मानव जीवन को सरल और सुरक्षित बनाया है। प्राचीन काल से लेकर आज तक विज्ञान ने चिकित्सा, संचार, परिवहन, कृषि, उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। चिकित्सा विज्ञान ने कई दवाइयों का इलाज संभव बनाया है, जिससे मानव जीवन की अवधि लंबी हुई है। संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने कानून, इंटरनेट, मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों को जोड़ा है। परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान ने रेल, हवाई जहाज, मोटर वाहनों का विकास किया, जिससे यात्रा को कम समय में और सुविधा के साथ किया जा सकता है। कृषि विज्ञान ने उद्यमों में मशीनरी और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया। विज्ञान ने केवल भौतिक जीवन को ही बेहतर नहीं बनाया है, बल्कि ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भी इससे क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। इससे मानव सोच और समझ में बढ़ोतरी हुई है। विज्ञान के कारण पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा के नवीनीकृत संसाधनों की खोज भी हम कर पाए हैं। हालांकि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से विज्ञान के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे प्रदूषण, प्राकृतिक पदार्थों के भारी दोहन से होने वाली समस्या। पर इन सभी समस्याओं का कहीं ना कहीं निदान भी विज्ञान से ही संभव है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि विज्ञान मानव जीवन का सिद्धांत बन गया है, एक बड़ा हिस्सा बन गया है। इसका सही और सकारात्मक उपयोग हमें कैसे करना है, कैसे अपने जीवन को सरल बनाना है, ये हमें ही सुनिश्चित करना होगा। हमें ही विज्ञान का सदुपयोग करके इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करना होगा, इससे बचना होगा। तभी हम एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं, अपने देश को उन्नति की राह पर अग्रसर कर सकेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर सुबह के 8 बजने को हैं अब समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे, वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में NDA के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले NDA विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। NDA में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
7: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
8: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
9: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
3: सेमीफाइनल में कलियश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकांगवा, मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 011-23-01-04-8, 011-23-71-7106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
10: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिंदुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC Under-17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
3: आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज गायक कलाकार हैं महावीर गुड्डू और साथी।

इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज कलाकार थे महावीर गुड्डू और साथी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप सभी को किरण का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे चरस फिल्म के गीत के साथ, और इस गीत को सुनना चाहा है भटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, मॉडल टाउन करनाल से नरेंद्र तनेजा, जग्गी दुआ संदीप गुगलानी, किरण ठाकुर, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, इसप्रीत शर्मा, सुरेंद्र कुमार जैन ने इस गीत को सुनना चाहा है जनता कॉलोनी रोहतक से, और छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं चरस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में।

चरस फिल्म के गीत के बाद अगला गीत आपको नजर करेंगे तो रास्ते फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या और प्रियंका, जटगांव सोमनाथ जिला जालना से नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश भूतेकर, कार्तिक भूतेकर, अश्विन भूतेकर, जटगांव से वैष्णवी जगधावे, हरसुल सावंगी, औरंगाबाद से वैभव गौरव लोखंडे, भाव सिंहपुरा औरंगाबाद से मेघराज युवराज कोलते और रिधोरा देवी। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत दो रास्ते फिल्म से।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

बंजारन फिल्म से गीत आपने सुना। आवाज़ें थी अलका याग्निक मोहम्मद अजीज़ की। इस गीत को सुनना चाहा था शोभापुर मेरठ कैंट से दिग दर्शन और कविता ने, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिलू परवेज़, इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीद, ज़िला खरगोन सनावद उत्तर प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा और राजकुमार बोडाना, आदलपुरा गोगांव से संजय बामनिया, माया काना और कृष्णा, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, आश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, मालियान सरगना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और जीव्यम जैन ने। अगला गीत आपको सुनवाएंगे क्या यही प्यार है फिल्म से, और इस गीत को सुनना चाहा है बेरडी से हुकम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर, तनु करमरकर, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। इसी गीत के लिए गोला बाजार बक्सर से फरमाइशी खत भेजने वाले श्रोता हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित। पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, और मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत और नीशू। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं अलका याग्निक बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में जलीश रशीद का लिखा गीत साजिद वाजिद के संगीत के साथ क्या यही प्यार है फिल्म से।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक

एक दूजे के लिए फिल्म से गीत आपने सुना। आवाज़ें लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम की, गीत लिखा आनंद बख्शी ने और पसंद थी आप सभी की। गांव कैरो, जिला तरन तारण, पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद। गांधी चौक रोपड़, पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतक बिरक, मीका बिरक। धामनी मनौरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश आदेश, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और सोमठाणा मनौरा से विशाल कवाणे, ललिता पायल। चकला बाजार समाना से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल। अगला गीत आपको सुनवाएंगे श्रीमान आशिक फिल्म से, कुमार सानू की आवाज़ में, पसंद आप सभी की। राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रेणु मिश्रा, रुद्र गुप्ता, शनी कुमार, पंकज लाल दास। राजनगर गांधी चौक से रानी गुप्ता, सोनाली गुप्ता, संगीता गुप्ता, मेनका गुप्ता, पलक पंखुरी, माधवी, साध्वी, हैप्पी, गुनगुन, चुलबुल, रेणु, ज्योति, शालू, दीपशिखा और अर्चना। सुंदरखेड़ राज माता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार। डोंगरगांव जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम शैफी। मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

तुम बिन फिल्म से ही गीत आपने सुना। इस गीत को सुनना चाहा था मोहल्ला हलवाइयाँ शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश शाबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, डव्वाली हरियाणा से जेके बकौलिया, सुनीता बकौलिया, संजय अनिल, मीनू बकौलिया और

रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़, राजस्थान से हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक, और इस गीत के लिए खत भेजा है अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी ने। अगला गीत आप सभी को सुनवाएंगे साया फिल्म से, और इस गीत को सुनना चाहा है गांव नथाना से, पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमधाड़े, स्वराज जमधाड़े। दौलताबाद मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी ने।

साया फिल्म से गीत आपने सुना। अगला गीत आपको सुनवाएंगे फर्ज फिल्म से। आवाज़ें लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की पसंद आप सभी की। प्रोमिलागंज, आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा। जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण। जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदवठे, आरती जोंदवठे। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं फर्ज फिल्म से ये गीत।

फर्ज फिल्म का गीत आपने सुना। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आपके लिए लेकर आए हैं दिलवाले फिल्म से आवाज़ कुमार सानू की, पसंद आप सभी की।

आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर, सरिता गवहानकर, एकांश गवहानकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहानकर, प्रणीता गवहानकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवहानकर, श्वेता सुमित गवहानकर, ध्वनि गवहानकर। सागर और आम्रपाली ने खत भेजा है केरला से। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक गांव दीवाल से शंकर लाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। गांव छेंगा से खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वागे। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में दिलवाले फिल्म का गीत।

0: इसी की के साथ संपन्न होता है पत्रों पर आधारित फरमाइश फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 10 बजने को हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में 10:05 पर अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बेचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की।
2: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
1: प्रधानमंत्री की ये अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $126 प्रति बैरल हो गई है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और ₹75 का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का निरंतर ध्यान प्रतिभाओं को सशक्त बनाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय प्रगति तथा नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले समाधान विकसित करने पर केंद्रित है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार कई परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से नवाचार क्षमता का उपयोग करते हुए भारत के विकास को गति दे रहा है। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। सुबह के 11:10 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।

0: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को। द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
1: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture, and our deep faith. As we mentioned, that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbhabhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbhabhishek?
2: नमस्कार। आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया।

0: है, क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
1: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
0: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण
1: जी,
0: अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं, या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से, उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
1: जी।
0: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है, इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parva, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tell us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the सोमनाथ मंदिर।
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से, और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन

0: इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो हैं वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन जो अलग अलग ये बनाएंगे। वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था, उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
1: Yes, you are absolutely right, Neelam, and as you mentioned that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. Manaha Shiva Sankalpa Mastu Shumukhascha Ekadan.

0: विष्णु श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्ता मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं वहाँ से और शिखर तक, एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक पे जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए ये हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम, इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया, और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम कारण यदि समझ सकें, तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है, इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है, मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर, सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है, और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है, अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और ये भी संयोग ही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं, और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में, और वायु सेना के जो यान है वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं, इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy. Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jaipal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna Dev and Siddharaja Jaisimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate. And on his clarion call, it was not only the people of Gujarat, but also the people of entire India that responded enthusiastically.
3: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है, सोमनाथ मंदिर हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है. आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे. आइए, आपको सुनवा रहे हैं एक भजन.

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन

0: इस समय सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम, द टाइम फॉर द सूर्य किरण, द एरोबैटिक टीम, द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT, the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Ajay Dasharathi, performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed! And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And early, we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force. And now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे, तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणवक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है, वहीं उ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है, और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है, इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए, मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाएं तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है, उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहाँ हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में, हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, पुराणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
0: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई, और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी जो विरासत है उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में.
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. एंड incidentally Neelam, today is the very day that the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, had inaugurated the reconstructed Somnath temple on the 11th of May 1951, and Dr. Rajendra Prasad had on that occasion said that the Somnath temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat Shrestha Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है. जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके. और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधाएं रहे और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें. अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें. जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं. ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है. और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें. और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं. और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं. यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है. और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर के में इस अमृत महोत्सव का विवरण हम

0: रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार।
1: जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम ही 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर डीटीएच और न्यूज़ होने आईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:22:22 हुए हैं। हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। दूसरी सभा में दिन में 12:30 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर पर आपसे फिर मिलेंगे।

मिडवे 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:25 हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं, आरंभ कर रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम से।

0: पतंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है

0: जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओं, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओं आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
0: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
0: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
0: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
0: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियाँ समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
0: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
1: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
0: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
0: माई बाईसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes sir, we have seen.
4: I have seen sir.
5: I like bicycle sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink
9: and mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Trin, trin, trin!
6: Do it again, please.
3: Ring, ring, ring.
2: I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Trin, trin, trin goes the bell.
2: Makes my friends move aside.
3: Makes my friends move aside.
2: The seat is blue in color.
3: The seat is blue in color.
2: The tires and pedals are black.
3: The tires and pedals are black.
2: Sometimes fast.
3: Sometimes slow.
2: But my bicycle is always on track. To keep my bicycle moving.
3: All I need is some air.
2: I put on my little helmet. And I go happily everywhere. Well, children, you have now heard this poem and recited with me. How did you find it? Isn't it lovely?
3: Yes, sir. It's lovely.
2: So now let's listen to a beautiful song on this poem, which is being sung by a lovely little girl just like you.
7: Just like us.
2: Yes. And you can also hum along with this song while listening to it. Okay?
3: Yes, sir!
2: So here comes the song on bicycle. Listen and enjoy.

0: So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
1: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
3: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
4: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
5: साहब, आप क्यों परेशान होते हो? हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
4: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
5: वो तो ठीक है साहब,
4: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
5: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
4: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
5: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
4: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
3: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
6: माँ।
7: अरुण, बेटा तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
6: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
7: हाँ।
6: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
7: बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
6: जी।
7: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
6: जानता हूं मां।
7: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
6: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
7: जाओ बेटा।
3: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है, पर दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। साहब
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं।
2: आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है, थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे। हिंदी में समाचार इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हरेक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा, कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का उल्लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
3: अभी आप सोमनाथ
4: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है।

ये आपने सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति का गाया वास्तव फिल्म का गीत सुना। समीर के बोल थे, संगीत था जतिन ललित का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अफलातून फिल्म से, चित्रा और ए हरिहरन की आवाजें आप सुनेंगे। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है दिलीप सेन समीर सेन का।

अफलातून फिल्म का गीत आपने सुना, चित्र और हे हरिहरन की आवाज़ें आपने सुनी। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था दिलीप सेन समीर सेन का। अगला गीत 1942 आ लव स्टोरी फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। कुमार सानू ने गाया है, आर डी बर्मन का संगीत है, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

ये था 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का गीत। फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अर्जुन पंडित फिल्म का गीत अपने चुना है आपके लिए, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में गाया हुआ। जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत है दिलीप सेन समीर सेन का।

ये था अर्जुन पंडित फिल्म का गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें आपने सुनी, जावेद अख्तर के बोल थे, संगीत था दिलीप सेन समीर सेन का। अंगारे फिल्म का गीत अब आइए सुनते हैं, अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ें आप सुनेंगे, जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत है अनु मलिक का।

ये था अंगारे फिल्म का गीत। अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ें आपने सुनी। जावेद अख्तर के बोल थे, संगीत था अनु मलिक का। फिल्मी गाने आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अपने श्रोताओं को बता दें, प्रादेशिक समाचार आज आप सुनेंगे 2:35 पर। ये थी जानकारी आपके लिए। बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं अलबेला फिल्म का गीत। अलका याग्निक और ए हरिहरन की आवाज़ें हैं। रानी मलिक का गीत है, संगीत है जतिन ललित का।

ये था अलबेला फिल्म का अलबेला सा गीत। बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत। कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ें आप सुनेंगे। महबूब का गीत है, संगीत है इस्माइल दरबार का।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना चमेली फिल्म से, सुनिधि चौहान की आवाज़, इरशाद कामिल के बोल, संदेश शांडिल्य का संगीत है।

0: interest in science and technology. The day also raises awareness about technology's role in addressing societal challenges and improving daily life. As India embraces cutting-edge technologies like AI, biotechnology, and quantum computing, the day serves as a reminder of progress and the power of innovation. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators and researchers of the country on the occasion. India Meteorological Department IMD has forecast isolated thunderstorms, lightning and gusty winds over northwest parts of the country till Thursday. Isolated hailstorm activity is also likely to be experienced in Jammu Kashmir, Ladakh, today and tomorrow. The weather agency has said that Himachal Pradesh and Uttarakhand are also expected to experience similar conditions tomorrow. Meanwhile, the Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas, tomorrow and the day after tomorrow. In IPL cricket, Punjab Kings will face Delhi Capitals at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala this evening. The match will begin at 7:30 p.m. In football, India will play against hosts China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. A win will seal India's qualification for the FIFA Under-17 Women's World Cup. Benchmark domestic equity indices continued to trade around 1% down in afternoon session today. The Sensex dropped 796 points to 76,533. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing. Also launches Ayushman Bharat health scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
3: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
2: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
3: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
3: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
4: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
2: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: ढलेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
2: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
3: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज 2 मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है।

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: खेत कल्याण कार्यक्रम सुनने वाले सारे वन भजन बिवानिल भाई की राम राम। और मौसम भाई, जिस तरह का जिक्र चल रहा था और जो सूचना भी थी अपने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की तरफ से, तो प्रदेश के कई स्थान भाई सवेरे तड़कला उसी वक्त थे। अपने भी बूंदाबांदी भी आई। भिवानी के आसपास की बात करा तो भी कुछ रामड़ भी लगाई है, जिन भजन कपास कपूस की अपने बिजाई कर रखी थी। तो मौसम बाकी 13 तक का बता भी रखा है, इतना पश्चिमी विक्षोभ का भी ज़्यादा तो प्रभाव नहीं बताया जा रहा, भी घनी ठंडी बारिश हो। बाकी इस मौसम में आमतौर पर हर साल हम देखा ब्राह्मण होगी, पापड़ी होगी, इस तरह मौसम इसमें चल रहे हैं। बाकी जो भी हमारे खेत करके काम है, लगभग तूड़ी का हमारा काम हो लिया, न्यार का, फूंस का, और भाई काडन का भी, चना का, गेहूँ का, जौ का, मेथी का, सारा लगभग हमने काम निपटा लिया। उसकी बजाय पानी पात दे के थोड़ी बहुत उसमें, उसके बाद ये है कि अच्छी डाल जब वो मिल जाए मिट्टी में तो फिर ये हो जाए कि एक बढ़िया उसको खाद का रूप भी ले ले है। और जो भाई कंप्यूटराइज गोड़ी हम मारेंगे, एक शहर हो जाएगा, छोटे मोटे फान हैं उनकी।

कूद करके हर एक बढ़िया पड़ोसा हमारा जो फसल है उसमें भाई लाग जाए है। और समय रहते भाई अपना जो बिरानी खेतों की हम बात करा जब भी सरसों या चना ही लिया जाए है, उन खेतों में अपना भाई जिस तरह डोला है कोई भाई अपना नाका है थोड़ी सी करड़े रखा अगर भाई बारिश का जो पानी है वो भी उसमें रखना है। और दूसरा ये कि जितना भी हो सके भी अपनी गहरी जुताई इस मौसम में हम करेंगे क्योंकि ज़मीन के अंदर जो भी सूक्ष्म भाई कुछ जीव हैं जो नुकसान कर रहे हैं या फिर सूत्रकर्मी भी हम कह सके हैं तो अच्छी खुली पलाऊ मार कर खुली जुताई करके उन्हें भाई छोड़ दें। सुहागा पेटा पाटा जो मैज है वो उसमें हम नहीं बांधें, खुला उसने छोड़ दें तो उसमें जितने भी जो तो पिस लग गए खांग जो जाल लगे आ गए तो जेठ की तो उसमें जितना भी होगा भाई उतना ही हमारा धरती की जो उर्वरा शक्ति भी इसमें बढ़ेगी और जो कीड़े हैं निचर जो बीमारी हैं वह भी इसमें बचेंगी। और बाकी तो भाई देखो आज भाई सोमवार है और साप्ताहिक ये कह सकते प्रादेशिक जो समाचार हैं वो भैया भाई 6:35 पे सुनवाए जाएंगे और जो कभी अपना आकाशवाणी का चंडीगढ़ के अंदर रिले करे जाएंगे भैया तो भाई 2:40 पे फिर मिलेंगे तो सुने भाई प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभ अभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जल अभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इससे पहले श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो किया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। सोमनाथ अमृत पर्व सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा,
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था।
1: आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था।
0: पिहोवा के गांव अरुणाई स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में वट वृक्ष पर पूजा अर्चना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी श्री राम मंदिर के उद्घाटन पर्व के तो साक्षी रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम का दिव्य और भव्य स्वरूप भी हमारे सामने आया है, जिससे प्राचीन काशी की गरिमा पुनर्जीवित हुई है और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के माध्यम से भारत अपनी जड़ों से जुड़ रहा है। इसी श्रृंखला में हम आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं।
2: यह नए भारत का वह कालखंड है जहां विकास और विरासत साथ साथ चल रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। भाई और बहनों, सोमनाथ मंदिर का वह इतिहास भारत की धैर्य गाथा का इतिहास रहा है। यह मंदिर अनेक बार टूटा, अनेक बार लूटा गया, लेकिन हर बार दो गुने साहस से ये खड़ा हुआ है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब सोमनाथ मंदिर पर प्रहार हुआ है, तब तब पूरे देश की आत्मा आहत हुई है, लेकिन हर बार राष्ट्र ने यह सिद्ध किया है कि हमारी आशा को तलवारें नहीं मिटा सकती हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उद्घोष था। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल मंदिर निर्माण नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान की पुनर्स्थापना है। 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। आज जब उद्घाटन को 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। श्री नायब सिंह ने कहा, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, उसका भविष्य भी कमजोर हो जाता है। इसलिए स्वाभिमान पर्व सांस्कृतिक जागरण का अभियान है। हमें अपने बच्चों को यह बताने की आवश्यकता है कि भारत केवल भौगोलिक सीमा नहीं है, भारत एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक आध्यात्मिक चेतना है। सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 75 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज जींद की पावन धर्रा पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: खेत खलियान कार्यक्रम में भाई एक बार से फिर से भैया का भाई अपना स्वागत है। भैया साप्ताहिक जो भी प्रादेशिक समाचार हैं वो भैया सुने, जो कि भी आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र थे रिले करे गए। और खेत खलियान कार्यक्रम में भी जिक्र हमारा चल रहा था मौसम का, जो हेर फेर चल रहा है। और भी देखो जो भी हमारे खेती बाड़ी के काम हैं, पारंपरिक जो परंपरागत भी कह सकते हैं, तकनीकी भी काम है, लेकिन इसके साथ में जो वर्षा एक धंधा की हम बात करें, जिस तरह की मछली पालन का इसमें जिक्र आया है, तो उसमें मौसम के हिसाब किताब से जो देखभाल है वो हमने रखनी है। तो भाई इसमें यह है कि जो भी हमारे तालाब हैं वो साफ़ सुथरे हों, पानी की उल्टा पलटी है, जल स्तर है, और बढ़िया इसमें यह रखे भाई हम मत्स्य जो भी अधिकारी हैं उनसे मिलें, कोई भी सी बेचैनी तनाव मछली हम सभी हम देखा भाई मुँह पाड़ के उपराना सांस ले हैं भाई, ऑक्सीजन की कमी है, तो थोड़ा सा इसके लिए प्रशिक्षण यदि हम ले लें फिर ये काम हम करें, तो फिर इसमें भाई जो हमारा घाटा सौदा वो इसमें नहीं होगा और बढ़िया रख रखाव भी इसमें हम कर पाऊंगे। बाकी भैया ने भाई चर्चा और भी करेंगे, लेकिन रागनी भैया ने सुनवा दे हैं, गायक कलाकार हैं नरसिंह और उनके साथी।

तो भैया आपने सुने रागनी, और मैं माफ़ी चाहवांगे, जो गायक कलाकार थे वो अपने निरंजन सांगी थे। सत्यवान सावित्री के किस्से की रागनी थी, और भजन जो नरसिंह का जिक्र चल रहा था भी वो रागनी भी भजन सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जिक्र करें कि भी जो भी मछली पालन का भजन काम कर रखा है उसकी जो देखभाल है किस तरह अपने करनी है। और देखभाल में इसमें यह है कि भाई हम कोशिश ये करें जड़ती भी उसके कि देखो जो एक बेसिक ज्ञान है, यानी कि हम बात करा कि भाई जो एक हमने पता है भाई इस तरह से खाना है पीना है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं भाई जिस तरह के चौमासे के मौसम आओगे जो वजन खेत में तालाब बना रखे हैं उनकी जो मेड़बंदी है वो ठीक ठाक सी रखें। बाकी की जो ज़मीन है भाई जिस तरह खेत में आगे भाई धान धून भी हम लगाओगे,

भी लगानी है और कई तरह के रासायनिक छिड़काव भी उसमें डाले जाएँ। कई बार डोले टूट के कोई अब दरार बन के बिल बन के रिस के तालाब में पानी आ जाए जहरीला, जिससे जो हमारी मछली है वो मर जाए हैं और जो हमारा काम धंधा है वो चौपट हो जाए है। ये अपना थोड़ा सा भाई ध्यान रखें, जो भी भाई अपना देसी जो जोड़ हैं तालाब हैं इनमें जो काम कर रखे अभी अपने ठेके पर लेके उनमें तो अभी भैंसा ने गोबर कर दिया और भाई उसमें थोड़ा सा भोजन उससे तो वो प्राप्त कर ले हैं। बाकी अपना कोई भी घर की वेस्टेज है जिस तरह के भी अपना भाई रोटी है टुका है या फिर अपना खड़ है इस तरह का ज्वार है वो मछली अपना खास के हैं। बाकी पानी की अल्टा पलटी इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितने भी पानी में ऑक्सीजन मिलेगी उतनी मछलियाँ की भी ग्रोथ भी होगी और सांस लेने में उन्हें दिक्कत भी नहीं आएगी और कई तरह के जो रोग हैं उन तक भी बच जाएंगी। सवेरे के टाइम पर हम तालाब के आसपास जाके देखेंगे तो भाई अगर ये देखें भाई मछली ऊपर ना मुँह पाड़ के सांस लेने लग रही हैं किनारे पा आके तो उसमें भी सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही है। इसके लिए कई तरह के आज कल यंत्र भी हैं वो भाई लगा के भी अपना पानी की अल्टा पल्टी हो सके, नहीं तो खुद भी अपना भी पानी के अंदर जाके उसकी अल्टा पल्टी कर सके हैं और नेटिंग समय समय पर करते रहें। जो भी उसमें जंगली मछली है कोई जंगली सांप है इस तरह के जो जिन जानवर हैं जो हमारी मछलियाँ खा हैं उन हम तालाब दें अलग कर दें और आसपास में थोड़ा सा भुजे उड़ा जो चूना है वो छिड़क दें भी किसी तरह का जो भाई रोग है वो अपना भाई किसी भी तरीके से तालाब में ना पहुँचे और कोई भी इसी समस्या हमने दिखे कोई बेचैनी है मछलियाँ में या फिर कई बार मछली कोड एक बीमारी हो जिस तरह मछली की जो खाल है वगड़नी इसमें शुरू हो जाए है कोई भी इसी समस्या दिखे है बिखाल जो खाल है वगड़नी शुरू होगी तो अपना चिकित्सक का जो परामर्श है देख रेख में हम ये काम उसमें करें। और ये है कई अवांछनीय जो पौधे हैं वो भी हमारे पानी में कई बार हो जाए हैं तो वो भी हम जो तालाब है उससे निकालते रहें और जड़ती भी हो उसके पानी की अल्टा पल्टी तो हम जिक्र करें लेकिन कुछ थोड़ा सा पानी का जो बदलाव है वो भी इसमें हमने करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घना जो गिदले उड़ा पानी है बदबूदार हो जाए जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जिसमें जो पोषक तत्व हैं वो भी इसमें ख़त्म हो जाए हैं। इस तरह का पानी की बजाय थोड़ा सा जो नहर का ताज़ा पानी है वो उसमें डाल दिया और थोड़ी सी पानी का जो बदलाव है वो इसमें बहुत ज़रूरी हो जाए। और बाकी जो भी अपना परंपरागत भाई करते आ रहे हैं भाई यानी ज्ञान भी है तो अपनी जो देख रेख है वो अपने इसमें सही निगरानी में रख के हमने करना। कई बार ये भी हो जब हमने तालाब जिक्र करा था भाई ठेके पर ले रखा है और भाई रेंट पे ले रखा है और घनी ओवरफ्लो बारिश होगी बहुत ज़्यादा बारिश होगी गाड़ा का जो पानी है पतनाला के माध्यम से ज़मीन का जो पानी है और आसपास का जो भाई टूट टाट के पानी तालाब भर जाए हर दूर तक कई कई किल्लियाँ तक भी जो पानी है भाई वो जल भराव होकर फैल जाए है तो उसमें फिर जो भी मछली हैं भाई वो अपने दाएँ बाएँ भी इसमें हो जाए कई तरह के जो जंगली जीव हैं वो भी उसमें नुकसान करने लग जाए हैं। तो थोड़ा सा ये भी पुख्ता अपने इंतज़ाम रखें भी जो तालाब हमने रेंट पर ले रखा है किराए पर ले रखा है ठेके पर ले रखा है उसमें जो घना जो गंदा पानी है बाहर का वो उसमें ना पहुँचन पावे ताकि जो हमारी मछली है वो उसमें भी खराब ना हो। तो वही भैया ने एक रागनी और सुनवा दें जिक्र कराया था भाई गायक कलाकार हैं नरसिंह और उनके साथ थी।

तो भैया आपने सुनी रागनी, गायक कलाकार थे नरसिंह और उनके साथी, और वह जिक्र हमारा चल रहा था कार्यक्रम में कि जो मछली तालाब हैं उनकी देखभाल के बारे में। तो इसमें हमने जिक्र किया कि पानी की उल्टा पलटी और स्वस्थ पानी का बदलाव, क्योंकि वह चिलचिलाती गर्मी के कारण जो तालाब हैं उनका पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाए, जिससे ऑक्सीजन का स्तर है वो इसमें कम हो जाए। तो इसके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई जो अपना तालाब का एक जल का स्तर है वो कम से कम भी 5 से 6 फुट का इसमें रखें, ताकि पानी का निचला हिस्सा है वो ठंडा रह जा और मछली उसमें आराम करें। बाकी भाई कुछ इस समय थोड़ी सी छाया की व्यवस्था भी हम कर सकें, जड़ भी मछली अपने सारी इकट्ठी होकर आराम उड़ कर सकें हैं। ऑक्सीजन की पूर्ति का हमने जिक्र कर लिया भाई, इसमें उल्टा पलटी पानी की बहुत ज़रूरी है, ताज़ा पानी इसमें ज़रूर हमने रखना है। गर्मियों में भी थोड़ा सा पानी जो है वो भी जल्दी गंदा हो जाए और ऑक्सीजन इसमें कम होने लग जाए। और जो चारा प्रबंधन का हमने जिक्र करा भी, जो भी अपना चाहे वो भाई बिंदौली खड़ है, मूंगफली खड़ है, ये जो मछलियाँ नमते हैं भाई सुबह और शाम के समय पर चारा दें, दोपहर की जो तेज़ धूप है उसमें चारा देने का जो प्रयोग है वो भाई हम थोड़ा सा इसमें परहेज रखें, और चारे की जो एक मात्रा है वो थोड़ी सी कम करें, और सुनिश्चित करें कि भाई 5 मिनट में सारा जो खाना है वो भाई अपना अच्छी डाल खा लिया जा। और बीमारियों से बचाव खातर जो चूनी है, बुझे उड़ा जो चूना है, या फिर पोटास का पानी में छिड़काव भी हम कर सकें, इससे पानी भी साफ रहेगा और जो हानिकारक बैक्टीरिया संक्रमण जो फैला हुए हैं वो इसमें नुकसान नहीं कर पाऊँगे। और जो भी इसमें बीमारी जानवर हैं, पक्षी हैं, उन तक थोड़ा सा भी अपने तालाब में रुखाड़ी से रखें, ध्यान रखें। जो भीतर अपना फालतू जो जंगली मछली हैं समय समय पर नेटिंग का काम करके जाल मार के और उन अपने तालाब तय भाई दूर करते रहें, और कोई भी इसी समस्या इसी भाई दिखे बेचैनी वगैरह मछलियाँ में, तो अपना जो भी चिकित्सक हैं, जो इनके जानकार हैं, उनसे जो मत्स्य अधिकारी हैं उनसे मिल के और फिर इसके बारे में भाई राय हम ले सके हैं, खुद अपने मनमाने तरीके से जो आर है या फिर भाई जो देखभाल है उसकी बजाय थोड़ा सा जो जानकार हैं उनकी देखरेख में यदि हम भाई मछली तालाबों की देखभाल करेंगे तो फिर अच्छा जो एक मुनाफा है वो हम ले सकेंगे। तो भी इसके साथ आज का जो खेत कल्याण कार्यक्रम है वो है समाप्त। अनिल भाई दो इजाज़त, सारे बड़ भाइया ने राम राम।

आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये रोहत केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम एंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 और 18 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

0: कार्यक्रम युवा संस्था सुन रहे हमारे सभी साथियों का स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी की साथी याचना
1: और आप सभी श्रोताओं को महिमा का भी नमस्कार।
0: और साथियों, आज हम सबसे पहले कार्यक्रम में बात कर लेते हैं कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनका योगदान और उनके बारे में। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें जो हैं आपस में मिलकर कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इनका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। अगर हम केंद्र स्तर पर बात करें कि कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं, तो सबसे पहले तो मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति यानी कि मेरिट कम मीन्स आधारित छात्र स्कॉलरशिप, यह योजना तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए सबसे प्रमुख है। यहीं पर दूसरी की बात करें तो वो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है। यह उन छात्रों के लिए है जो 10वीं के बाद तकनीकी या फिर वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। इसके लिए जो योग्यता है वो होनी चाहिए कि पारिवारिक आय जो है उस छात्र की 2 लाख प्रतिवर्ष से कम होनी चाहिए। इनके अलावा जो कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण में पीएम विकास में यह एक एकीकृत योजना है जो सीखो और कमाओ, उस्ताद, नई मंजिल आदि योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है ताकि तकनीकी कौशल विकसित किया जाए। और साथियों, एक समृद्ध और समावेशी भारत का निर्माण तभी संभव है जब समाज का हर वर्ग, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म और समुदाय का हो, तकनीकी प्रगति में बराबर भागीदार बने। अल्पसंख्यकों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ना केवल उनके व्यक्तिगत उत्थान का विषय नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय विकास की अनिवार्यता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है, विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा जो कि आज के समय में रोजगार, नवाचार और का एक प्रमुख साधन है। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जैसे कि याचना ने अभी बताया हमें, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। और इन योजनाओं के माध्यम से जो है इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं उनकी सहायता की जाती है। उनकी फीस, पुस्तकें और अन्य शैक्षिक खर्चों के लिए उन्हें आर्थिक सहयोग दिया जाता है। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए अलग से भी छात्रवृत्तियाँ हैं जो कि प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करती हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हमारा देश एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सके। और इसी तर्ज पर जो ये योजनाएं हैं ये अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए हैं जो कि तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी जानते हैं आज सोमवार का दिन है, तो आज के दिन का विशेष कार्यक्रम रहता है हेलो जीनियस फोन इन कार्यक्रम। शुरू करने से पहले कुछ नियम आप सभी को बता देते हैं। 3 सवालों के सही जवाब आपको आज के इस कार्यक्रम का जीनियस बनाएंगे। यदि हमारे कोई 2 श्रोता एक प्रश्न पर रुक जाते हैं तो उस प्रश्न का सही जवाब हम आपको बताएंगे।
0: और इसके अलावा हमसे जुड़ने के लिए जो आपके लिए टेलीफोन लाइन्स खुली हैं वो रहेंगी 012-62-55-446, 255-447 और 255-448। और इसी के साथ आप सभी के लिए पहला प्रश्न रहेगा कि किस भारतीय को 2026-27 कार्यकाल के लिए ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स अलायंस ग्लोबल फोरम का अध्यक्ष चुना गया है। हेलो
2: हेलो
0: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार, मैं राहुल बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान से।
0: हाँ जी राहुल, आपका स्वागत है। आपके लिए प्रश्न है कि किस भारतीय को 2026-27 कार्यकाल के लिए ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स अलायंस ग्लोबल फोरम का अध्यक्ष चुना गया है।
2: दोबारा बताना मैम।
0: किस भारतीय को 2026-27 कार्यकाल के लिए ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स अलायंस ग्लोबल फोरम का अध्यक्ष चुना गया है?
2: कोई हिंट है मैम?
0: इसके लिए तो आपको नाम ही बताना है, इसमें तो कोई हिंट जो है आवश्यक नहीं है।
2: ओके, नहीं आता।
0: इसी के साथ साथियों हम बढ़ते हैं हमारे अगले साथी की ओर। हेलो
3: हेलो
0: जी, नमस्कार
3: जी, मैं अंद्रा भी बोल रहा हूँ।
0: जी रवि जी, आपका स्वागत है। आपको बताना है कि किस भारतीय को 2026-27 कार्यकाल के लिए ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स अलायंस ग्लोबल फोरम का अध्यक्ष चुना गया है।
3: ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर अलायंस का?
0: जी
3: जी, भास्कर ज्योति।
0: जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर भास्कर ज्योति सोनोवाल।
1: और अगला प्रश्न आपके लिए है कि भारत का पहला पूर्ण रूप से पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बना है?
3: भारत का पहला
1: पूर्ण रूप से पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बना है?
3: राज्य?
1: जी
3: गुजरात?
1: जी नहीं,
3: साउथ से। मैम
0: एक बार फिर से बताइएगा।
3: मतलब कोई दक्षिण है भारत से?
0: जी नहीं, ये एक उत्तर पूर्वी राज्य है।
3: बिहार?
0: एक बार फिर से।
3: बिहार?
0: जी बिहार तो नहीं है इसका सही जवाब।
1: आपको बताना है पेपरलेस न्यायपालिका वहाँ की जो राज्य की बनी है वो राज्य का नाम आपको बताना है।
3: मणिपुर?
0: मणिपुर भी इसका सही जवाब नहीं है, लेकिन उसके आसपास।
1: कार्यक्रम में आप जुड़े हमारे साथ, प्रयास किए आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही रहेगा और अगले श्रोता की ओर बढ़ते हैं। हेलो हेलो,
4: राहुल बात कर रहा हूँ मैम।
1: जी राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आपके लिए है कि भारत का पहला पूर्ण रूप से पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बना है?
4: महाराष्ट्र?
1: जी नहीं,
4: झारखंड।
1: जी झारखंड भी सही जवाब नहीं है।
0: आपको हिंट दे देते हैं कि ये एक उत्तर पूर्वी राज्य है।
4: उत्तर पूर्वी? मेघालय?
0: मेघालय नहीं है, लेकिन उसके करीब का ही एक राज्य है।
4: मिजोरम?
0: मिजोरम भी नहीं है।
1: चलिए, आपके प्रयास अच्छे रहे। और यहाँ पर दो श्रोता हमारे साथ हो चुके हैं इस प्रश्न को लेकर, तो सही जवाब है दोस्तों इसका सिक्किम। सिक्किम राज्य की जो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से डिजिटल हो गई है, वहाँ पर जो पेपरलेस हम उसको कह सकते हैं।
0: और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो रहेगा ओपन फील्ड वेधशाला ऑफ कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड की स्थापना किस शहर में की गई है? हेलो हेलो साथियों, आपके लिए जो प्रश्न है वो आपको बताना है कि ओपन हेलो
4: हेलो राहुल बात कर रहा हूँ, याचना मैम, क्या क्वेश्चन है?
0: जी राहुल जी, आपको बताना है कि ओपन फील्ड वेधशाला ऑफ कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड की स्थापना किस शहर में की गई है?
4: चेन्नई में?
0: जी चेन्नई।

0: इसका सही जवाब नहीं,
1: इंटरनल।
0: ये जो है एक दक्षिण का ही शहर है,
1: हैदराबाद।
0: हैदराबाद भी नहीं है लेकिन अब करीब है।
1: हैदराबाद के करीब है तो विशाखापट्टनम।
0: जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये विशाखापट्टनम में है जो इसकी स्थापना की गई है। और भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है?
1: इसका तो मतलब किस साइड ऐसे बताना है कि मैम, जैसे
0: जी
1: उत्तर पश्चिम में।
0: हाँ, आपको रेलवे जोन का नाम बताना है, आपको बता देते हैं इसका मुख्यालय जो है वो विशाखापट्टनम में स्थित किया गया है। आपको रेलवे जोन का नाम बताना है, 18वां रेलवे जोन है ये।
1: मतलब ये साउथ का बना है ना, दक्षिण जोन।
0: जी दक्षिण तटीय रेलवे जोन है ये, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अब आपको बताना है कि ईशांक सिंह जो पाक स्टेट को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं, किस राज्य से संबंधित हैं?
1: हरियाणा से।
0: जी गलत जवाब है आपका ये।
1: नहीं आता मैम, सॉरी।
0: और इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं हमारे अगले साथी की ओर। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार
1: जी, रामधारी बात कर रहा हूँ।
0: जी। रामधारी जी, आपका स्वागत है। आपको बताना है कि ईशांक सिंह जो पाक स्ट्रेट को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं, वो किस राज्य से हैं?
1: झारखंड।
0: जी बिल्कुल सही जवाब है आपका ये। और द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ?
1: सिंगापुर।
0: जी नहीं,
1: सिनबैक्स पूछा
0: जी
1: ना।
0: सिनबैक्स जो है वो भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ, इस प्रकार का ये दूसरा संस्करण था। जी CINBAX।
1: चाइना।
0: जी नहीं।
1: थैंक यू।
0: कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और सैन्य अभ्यास से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबेक्स का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, स्वागत है आपका, नाम बताएं।
1: सतीश मैडम।
0: जी सतीश जी, सवाल आपके लिए है कि सैन्य अभ्यास सिनबेक्स का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ?
1: अमेरिका मैडम।
0: जी अमेरिका सही जवाब नहीं है।
1: तो मैडम फिर फ्रांस।
0: जी ये आपको बता दें कि ये हमारे एशिया का ही देश है, फ्रांस, लेकिन इसका सही उत्तर नहीं है।
1: तो मैडम अगले प्रश्न पे आता हूँ।
0: कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो नियमों के मुताबिक यहाँ दो साथी इस प्रश्न को लेकर हमसे जुड़ चुके हैं। सही उत्तर है इसका कैम्बोडिया, कैम्बोडिया और भारत के बीच में इसका आयोजन हुआ। नाम है अभ्यास का सिनबेक्स, जिसका दूसरा संस्करण था।
2: और आप सभी के लिए अगला प्रश्न रहेगा कि भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम किस राज्य से लागू हुआ?
1: हेलो, राहुल बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग मैम।
2: आपका फिर से स्वागत है राहुल। आपको बताना है कि भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लागू हुआ?
1: आंध्र प्रदेश।
2: इसका सही जवाब नहीं है
1: मैम।
2: ये। जो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है एक कोल्ड डेजर्ट भी है,
1: हरियाणा।
2: ये आपका गलत जवाब है राहुल।
1: मतलब किस साइड पड़ता है, ऐसा कुछ बता सकते हो फिर, थोड़ा आइडिया।
2: ये जो है वेस्ट स्टेट है,
1: वेस्ट महाराष्ट्र।
2: ये भी गलत जवाब है। प्रयास करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से जब हम टोल टैक्स हाईवेज पर जाते हैं तो उसमें काफ़ी आसानी से जो यात्री है वो टोल टैक्स उनका भर सकेगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बिल्कुल ये।
2: जी बिल्कुल महिमा। और अगर बताएं तो यहाँ पर हमारी जो रोड पर चलते हैं व्यक्ति, मतलब अपने वाहनों को लेकर, तो उनको जो है टोल्स पर रुकना भी नहीं पड़ेगा
0: जी
2: और समय
0: बिल्कुल,
2: भी बचेगा उनका।
0: सबसे महत्वपूर्ण समय बचेगा, और जब गाड़ियाँ रुकेंगी नहीं तो वहाँ पर प्रदूषण भी कम होगा। तो जो
2: फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लागू हुआ है? हेलो
3: हेलो
2: सतीश जी, आपका
3: हेलो
2: फिर से माफ़ कीजिएगा, रामधारी जी, आपका फिर से स्वागत है।
1: जी, धन्यवाद। क्या पूछा मैम प्रश्न, एक बार
2: आपको
1: देख करें।
2: बताना है कि भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लागू हुआ है?
1: राज्य में कोल्ड डेजर्ट बताया ना मैम, एक हिंट के तौर पे।
2: जी
1: हाँ,
2: जी
1: ये लद्दाख में मैम, कोल्ड डेजर्ट पे। अच्छा
2: जी नहीं, एक हमारा यहाँ पर जो ये राज्य है वहाँ भी है, वेस्ट में,
1: अच्छा
2: ये जो स्टेट पड़ता है बिल्कुल वेस्ट में भारत के।
1: गुजरात।
2: जी बिल्कुल सही जवाब है आपका ये। और अगला सवाल आपके लिए है रामधारी जी, कि गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है?
1: गिग वर्कर्स के महाराष्ट्र। अच्छा
2: जी महाराष्ट्र नहीं है।
1: गिग वर्कर्स का साउथ का ही कोई स्टेट है।
2: जी बिल्कुल, ये एक दक्षिण राज्य है।
1: चलो एक और मैं पढ़ा है मैंने लेकिन कंफर्म नहीं। कर्नाटका।
2: जी कर्नाटका बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला जो प्रश्न आपको जीनियस बना सकता है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में है?
1: वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड,
2: जी
1: जिनेवा।
2: नहीं, जी नहीं, ये तो सही जवाब नहीं है।
1: थैंक यू मैम।
2: प्रयास करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं हमारे अगले साथी की ओर। हेलो
4: गुड इवनिंग मैम, राहुल बात कर रहा हूँ।
2: जी राहुल जी, आपका फिर से स्वागत है। आपको बताना है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है?
4: न्यूयॉर्क अमेरिका में।
2: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है।
4: तो कनाडा में।
2: जी बिल्कुल, कनाडा में तो है पर आपको शहर का नाम बता।
4: मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल शहर।
2: जी मॉन्ट्रियल कनाडा सही उत्तर है बिल्कुल ये। और अगला सवाल आपके लिए है, विश्व अस्थमा दिवस हम कब मनाते हैं?
4: विश्व
2: अस्थमा दिवस हाल ही में अभी ये दिन मनाया
4: ये
2: गया
4: 8 मई।
2: है। जी आसपास हैं आप लेकिन 8 मई तो सही जवाब नहीं है।
4: 6 मई।
2: जी नहीं, एक
4: ठीक है,
2: और
4: नहीं आता मैं।
2: कोई बात नहीं। विश्व अस्थमा दिवस, जिस पर इस कार्यक्रम में भी हमने अपने श्रोताओं के साथ जानकारी साझा की थी, ये दिवस कब मनाया जाता है? हेलो
5: हेलो
2: जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, नाम बताइए।
5: जी मैं रवि बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है?
2: रवि जी, क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व अस्थमा दिवस कौन से दिन मनाते हैं?
5: विश्व अस्थमा भी मनाया
2: जी हाल ही में,
5: गया 5 मई को।
2: 5 मई, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया है आपने। और आपके लिए अगला प्रश्न रहेगा कि उरुग्वे सम्मेलन में किसकी स्थापना हुई थी?
5: किस सम्मेलन?
2: उरुग्वे।
5: उरुग्वे सम्मेलन।
2: जी
5: क्या बताना है इसमें स्थापना?
2: जी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना हुई थी, आपको उसका नाम बताना है।
5: उरुग्वे सम्मेलन किया था 1986। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO।
2: जी बिल्कुल
5: विश्व
2: सही
5: व्यापार
2: जवाब है
5: संगठन।
2: आपका ये।
5: हेलो
2: हेलो
5: जी मैम, आवाज कम आ रही, बोल रही। हेलो
2: हेलो
5: जी जी आपकी आवाज आ रही है और दूसरी मैडम की नहीं आ रही।
2: अच्छा, आपके लिए जो हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपको बताना है कि किस राज्य ने जनगणना 2027 के हिस्से के रूप में हर द्वार दस्तक अभियान शुरू किया है?
5: दिल्ली।
2: जी नहीं, ये तो सही जवाब नहीं है। आपको बता दें कि ये जो पहाड़ी राज्य है ये।
5: पहाड़ी उत्तराखंड।
2: जी बिल्कुल सही जवाब है आपका ये। और अगला सवाल
5: जी
2: आपसे पूछा है हमने कि मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है?
5: मत्स्य संपदा।
2: मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है?
5: मोती।
2: जी ये जो केंद्र है इसके भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है, किस जगह पे? जी आप राज्य बता दीजिए, आप बिल्कुल शहर बता दीजिए, जो भी आप जानते हैं।
5: तमिलनाडु।
2: जी तमिलनाडु नहीं है। आपको बता दें
5: आंध्र।
2: कि यहाँ से जो है हमारे एक बहुत ही बड़े दिग्गज क्रिकेट के खिलाड़ी भी हैं। ये तो आपको बताना है कि हमारा कौन सा राज्य है। हमारा काम हिंट देने का था और प्रश्न पूछने का था।
0: चलिए, आप प्रयास, आपकी ओर से प्रयास। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है?
6: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं।
6: रामधारी बात कर रहा हूँ।
0: जी रामधारी जी, सवाल
6: झारखंड के हजारीबाग में।
0: जी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया है आपने।
2: और आपके लिए अगला प्रश्न रहेगा कि कौन सा राज्य भारत का तीसरा पूरी तरह से साक्षर राज्य बना है?
6: पूरी तरह से साक्षर राज्य बना है
2: जी।
6: तमिलनाडु।
2: जी नहीं, ये तो सही जवाब नहीं है। हेलो साथियों, आपको बताना है कि कौन सा राज्य भारत का तीसरा पूरी तरह से साक्षर राज्य बना है। और आपको बता दें कि जो ये राज्य है वो मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा सबसे साक्षर राज्य बना है हाल ही में। हेलो।
7: गुड इवनिंग यात्रा, मैं राहुल बात कर रहा हूँ झुंझुनू राजस्थान।
2: जी राहुल जी, आपका फिर से स्वागत है। आपको बताना है कौन सा राज्य भारत का तीसरा पूरी तरह से साक्षर राज्य बना है?
7: मेघालय।
2: जी नहीं, मेघालय तो इसका सही जवाब नहीं है। अगर आप
7: नॉर्थ ईस्ट का ही है मैम,
2: जी
7: त्रिपुरा।
2: जी त्रिपुरा इसका सही जवाब है।
0: और अगला प्रश्न है, IIT मद्रास ने अमेरिका के किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र खोला है?
7: किसने मैम क्या बोला आपने?
0: IIT मद्रास ने अमेरिका के किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र खोला है?
7: ये अमेरिका के शिकागो से।
0: जी नहीं,
7: कैलिफोर्निया।
0: जी कैलिफोर्निया बिल्कुल सही जवाब है।
2: और आपके लिए अगला सवाल कि श्री नानक निवास नामक भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ स्थापित किया गया?
7: पंजाब।
2: आपको शहर का नाम बताना है राहुल जी।
7: जालंधर।
2: जी नहीं,
7: पटियाला।
2: पटियाला भी नहीं।
7: लुधियाना।
2: नहीं,
7: नहीं आता।
2: प्रयास करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं हमारे अगले साथी की ओर। हेलो हेलो साथियों, आप सभी को बताना है कि श्री नानक निवास नामक भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? हमारे एक साथी ने जवाब दिया था कि पंजाब में, लेकिन आपको शहर का नाम बताना है। हेलो
8: नमस्ते मैडम।
2: जी
8: नमस्ते मैडम।
2: जी नमस्कार सतीश जी, आपका स्वागत है। आपको
8: जालंधर मैडम।
2: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है।
8: तो मैडम फिर तो अगले प्रश्न पे आना पड़ेगा।
2: जी बिल्कुल साथियों, अगर हम आपको बताएं तो फाजिल्का पंजाब में इसका जो है इसकी स्थापना की गई है, इस लकड़ी के गुरुद्वारे की।
0: और बढ़ते हैं अब आगे। और अगला प्रश्न है हमारे श्रोताओं के लिए, हाल ही में अभी भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्यूटी गवर्नर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्यूटी गवर्नर के रूप में।
7: महिमा मैम, राहुल बात कर रहा हूँ।
0: जी राहुल, आपका स्वागत है।
7: सवाल
0: है आपके लिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्यूटी गवर्नर के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है?
7: डिप्टी गवर्नर ये साहिल शशिकांत दास।
0: जी नहीं, वो तो गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक के।
7: रोहित जैन।
0: जी रोहित जैन डिप्यूटी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं।
2: और आपके लिए अगला प्रश्न रहेगा कि भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
7: कोई है
2: इसके लिए तो जो है आपको सिर्फ राज्य का नाम बताना है।
7: हरियाणा।
2: जी नहीं, हरियाणा तो इसका सही जवाब नहीं है।
7: नई दिल्ली।
2: नई दिल्ली भी नहीं है। अगर आपको बताएं तो ये जो राज्य है थोड़ा सा दक्षिण की ओर है।
7: उड़ीसा।
2: जी नहीं,
7: ठीक है नहीं आता।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार। मैं
0: जी, नमस्कार। आपको बताना
1: राम
0: है,
1: धारी बात कर
0: जी
1: रहा
0: बिल्कुल, आपको बताना है कि भारत की पह
1: महाराष्ट्र में।
0: जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये महाराष्ट्र में।
2: और अगला सवाल एक बार आपसे पूछने से पहले हम पिछले प्रश्न को लेकर थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके जो गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा, और डिप्यूटी गवर्नर के रूप में रोहित जैन की हाल ही में अभी नियुक्ति हुई है। रामधारी जी, प्रश्न आपके लिए अगला है कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है?
1: दक्षिण एशिया का
2: जी
1: नारकोंडम
2: जी नहीं
1: बैरन,
2: जी, बैरन द्वीप आइलैंड जो है वो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय
1: जो कि भारत
2: ज्वालामुखी।
1: का भी एकमात्र है।
2: जी बिल्कुल
0: जी।
2: सही और सटीक उत्तर दिया है आपने।
0: और आपके लिए अगला प्रश्न, सूर्य के बाद कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है?
1: अल्फा सेंचुरी।
0: जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये अल्फा सेंचुरी जो है सूर्य के बाद सबसे करीब तारा है पृथ्वी का। और इसी के साथ आप बनते हैं हमारे कार्यक्रम के पहले जीनियस।
2: जी बिल्कुल रामधारी
1: थैंक
2: जी,
1: यू।
2: आपको बहुत बहुत बधाई हो कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।
0: और साथियों, आप सभी के लिए अगला प्रश्न रहेगा कि किस देश ने एक ऐसा नया प्लास्टिक बनाया है जो समुद्री जल में कुछ ही घंटों में घुल जाता है, जिससे समुद्री प्रदूषण से निपटने में मदद मिलती है? हेलो हेलो
3: हेलो
0: जी, नमस्कार
3: हेलो जी, मैं रवि बोल रहा
0: जी। रवि जी, आपका फिर से स्वागत है। आपको बताना है कि किस देश ने एक ऐसा नया प्लास्टिक बनाया है जो समुद्री जल में कुछ ही घंटों में घुल जाता है, जिससे समुद्री प्रदूषण
3: हूँ।
0: से।
3: जापान ने बनाया है, जापान
0: जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये जापान ने बनाया है। और अगर देखें तो ये, अगर हम इसको मिट्टी में डालते हैं तो वहाँ पर वो 200
3: जी,
0: घंटों
3: पूरी
0: में घुल
3: तरह
0: जाता है।
3: बायोडिग्रेडेबल है।
0: जी बिल्कुल
2: जी। और अगला प्रश्न खेलों से जुड़ा हुआ है आपके लिए। आयरलैंड के कार्लो में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीता?
3: बिलियन
2: जी, आयरलैंड में इसका आयोजन हुआ, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती?
3: इंडिया के है,
2: जी, आपको नाम
3: इंडिया के
2: बता।
3: तो मैम पंकज अडवाणी है। पंकज
2: जी नहीं,
3: अडवाणी,
2: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है।
3: सौरभ, सौरभ कोठारी।
2: सौरभ कोठारी ने जीती है ये चैंपियनशिप।
0: और आपके लिए अगला प्रश्न जो आपको जीनियस बना सकता है कि यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित हैं?
3: यूएन वर्ल्ड
0: फूड प्रोग्राम
3: और देश का नाम
0: जी, आपको, आप देश का नाम बता सकते हैं?
3: अमेरिका
0: अमेरिका इसका सही जवाब नहीं है।
3: जी, यूरोप में है ये शायद, है ना?
0: जी बिल्कुल, ये
3: ये शायद ये फ्रांस या इटली में से,
0: एक बार
3: इटली,
0: आप अपना जवाब फिर से दोहरा सकते हैं?
3: इटली में।
0: जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये इटली में जो है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेडक्वार्टर स्थित हैं। और इसी के साथ आप बनते हैं
3: नोबल प्राइज मिल चुका 2020।
0: जी, और इसी के साथ आप बनते हैं हमारे कार्यक्रम के दूसरे जीनियस।
2: आप एक बार अपना नाम बता दीजिए।
3: रवि बोल रहा हूँ।
2: जी रवि, आपको बहुत बहुत बधाई, कार्यक्रम के बनते हैं आप दूसरे जीनियस।
3: धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, प्रश्न और उत्तर का ये जो सिलसिला है इसको यूं ही जारी रखते हुए अगला प्रश्न आप सभी से हम पूछते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है?
4: हेलो
2: हेलो,
4: जी, नमस्कार मैडम
2: नमस्कार जी, नाम बताएं।
4: जी, उमेश बात कर रहा हूँ।
2: जी उमेश, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं?
4: 8 मई।
2: बिल्कुल सही जवाब है, 8 मई।
0: और आपके लिए अगला प्रश्न कि कौन सा देश आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2026 का मेजबान है?
4: ये इंग्लैंड और वेल्स।
0: जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये
2: किस देश को झीलों का देश कहा जाता है?
4: झीलों का देश वेनिस, इटली।
2: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है और वक्त हमें और इजाजत नहीं दे
4: फिनलैंड,
2: रहा इस
4: फिनलैंड,
2: सवाल का सही जवाब बताते
4: फिनलैंड।
2: हैं, फिनलैंड है। तो दोस्तों, अब आज के कार्यक्रम के जीनियस रहे रामधारी और रवि को बधाई देते हैं। अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। दीजिएगा इजाज़त अपने रेडियो साथी आचना और महिमा को।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: अनुसार आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू LPG की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का LPG भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य 1 वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर। आज रात 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। साप्ताहिक समीक्षा आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर, जिसे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 6:20 पर डॉक्टर मंगत राम की पूर्व प्रसारित बातचीत का विषय होगा धान की नर्सरी में सावधानियां। चौपाल, ये सजीव फोन इन कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 7:00 कार्यक्रम ग्रामीण संसार के तहत। NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:30 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात 10:00 आप सुन पाएंगे दीपा शर्मा से सितार वादन, राग रहेगा श्याम कल्याण। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:25 पर, इसमें आज आप सुनेंगे अमृतपाल सिंह की गाई गजलें। फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत अपने सुनने वालों के लिए लेकर आएंगे रात 10:30 पर। कार्यक्रम एक फिल्म से होगा रात 9:15 पर, इसमें आज आप सुनेंगे पारसमणि फिल्म से चुनिंदा गीत और फिल्म संगीत सुनिएगा रात 8:00। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल के मुख्य आकर्षणों पर। कल प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम विविधा में अलका की बातचीत का विषय होगा पौधों की देखभाल। समसामयिक विषयों पर चर्चा के साथ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुबह सवेरे आप सुन पाएंगे प्रातः 7:25 पर। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार होगा रोजाना की तरह शाम 5:30 पर। कार्यक्रम खेत खलिहान में दिन में 2:30 पर चर्चा का विषय रहेगा मक्का लोबिया की चराई के लिए काश्त, कुदरती खेती कितनी लाभदायक, ये विषय होगा डॉक्टर प्रीति की बातचीत का कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 6:20 पर। शाम 7:00 कार्यक्रम ग्रामीण संसार में डॉक्टर परमल चौधरी की बातचीत का विषय रहेगा उच्च रक्तचाप कारण व उपचार। NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया आप सुन पाएंगे शाम 5:45 पर। अब जानकारी कुछ संगीत कार्यक्रमों की। कल रात 8:25 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत होगा रात 10:30 पर। कार्यक्रम एक फिल्म से आप सुन सकते हैं रात 9:15 पर। चित्रपट संगीत कार्यक्रम में दिन में 1:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीत। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 7:30 और प्रातः 9:00। रात 9:30 पर सुनेगा हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम थारी पसंद और प्रातः 8:30 पर हरियाणवी लोक संगीत में कल के कलाकार रहेंगे सोमवीर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, सुनिए सूचनाएं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। थाना गन्नौर जिला सोनीपत सूचित करता है कि शिवम कुमार सन ऑफ धनंजय, जो कि गन्नौर जिला सोनीपत से दिनांक 18 अप्रैल 2026 से लापता है। शिवम का हुलिया आपको बता दें, उम्र 15 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गेहुआ व स्वस्थ शरीर है। इनके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं थाना गन्नौर जिला सोनीपत से। पुलिस स्टेशन मुरथल जिला सोनीपत सूचित करता है कि विनोद सन ऑफ चंद्रभान, जो कि दिनांक 26 मार्च 2026 से लापता है। हुलिया आपको बता दें, उम्र 46 वर्ष, कद 5 फुट 8 इंच, रंग सांवला, लंबूतरा चेहरा व स्वस्थ शरीर है। इनके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं पुलिस स्टेशन मुरथल जिला सोनीपत से। सूचनाएं समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे।
4: दीदी, नौकरी लग गई।
5: अरे वाह, बधाई हो।
4: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
5: हाँ दी, नया मोबाइल।
4: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
5: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
4: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
5: पर दीप,
4: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
5: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
4: अच्छा।
6: आरबीआई कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ अमृत पर्व आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर पिहोवा के गांव अरुणा स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बच्चों को भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना से परिचित कराने पर बल दिया। हरियाणा के विभिन्न जिलों में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशाल कलश यात्राएं निकाली गई। केंद्र सरकार ने कहा, देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार, घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी और हरियाणा में आज रात और आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि यह आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुछ सी प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
8: श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
8: प्रधानमंत्री ने इस दौरान भारत द्वारा 11 मई 1998 को किए गए 3 परमाणु परीक्षण का जिक्र भी किया।
2: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
8: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभ अभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जल अभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। पिहोवा के गांव अरुणा स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के माध्यम से भारत अपनी जड़ों से जुड़ रहा है। इसी श्रृंखला में हम आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं।
9: यह नए भारत का वह कालखंड है जहां विकास और विरासत साथ साथ चल रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। भाई और बहनों, सोमनाथ मंदिर का वह इतिहास भारत की धैर्य गाथा का इतिहास रहा है। यह मंदिर अनेक बार टूटा, अनेक बार लूटा गया, लेकिन हर बार दोगुने साहस से ये खड़ा हुआ है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब सोमनाथ मंदिर पर प्रहार हुआ है, तब तब पूरे देश की आत्मा आहत हुई है, लेकिन हर बार राष्ट्र ने यह सिद्ध किया है कि हमारी आशा को तलवारें नहीं मिटा सकती हैं।
8: मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उद्घोष था। श्री नायब सिंह ने कहा, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है उसका भविष्य भी कमजोर हो जाता है। हमें अपने बच्चों को यह बताने की आवश्यकता है कि भारत केवल भौगोलिक सीमा नहीं है, भारत एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक आध्यात्मिक चेतना है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रमों के आयोजन के समाचार मिले हैं। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज अंबाला छावनी के कैलाश हाथीखाना मंदिर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जींद में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय शिव चौक से ऐतिहासिक जयंती देवी मंदिर तक निकाली गई विशाल कलश यात्रा से हुआ। मंदिर पहुंचने पर भगवान शिव का विधिवत जल अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मीडा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा,
6: आज जींद में से भी धान गेट से लेकर मां जनता देवी के मंदिर तक ये कलश यात्रा पहुंची। इसी प्रकार पूरे देश में भगवान भोलेनाथ से भगवान सोमनाथ के आशीर्वाद से सभी जगह यात्राएं निकल रही हैं। ये एक आस्था और विश्वास की बात है। भगवान सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटा गया, धन्यवाद करना चाहूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जिन्होंने उस मंदिर का पुनर्निर्माण करने का काम किया।
8: पलवल के प्राचीन श्री जंगेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में हथीन के विधायक मोहम्मद इजराइल, जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला भी मौजूद रहे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की अटूट आस्था, सांस्कृतिक चेतना और आत्मसम्मान का प्रतीक है।
10: पलवल की ऐसी पवित्र जगह पर जंगेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद लेने के लिए आज हम सभी श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हुए। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि हम जिस सनातन संस्कृति की बात करते हैं, वो सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, सर्वे भवन्तु सुखना की बात करती है। साथियों, ये संस्कृति के पर्व हमारे देश की आत्मा है।
8: हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने सिरसा की मुल्तानी कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में सोमनाथ सद्भावना पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के इतिहास व पुनर्निर्माण पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। महिलाओं द्वारा नेहरू पार्क से मंदिर परिसर तक कलश यात्रा निकाली गई। फरीदाबाद सैनिक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत सैनिक कॉलोनी सामुदायिक केंद्र से निकाली गई भव्य कलश यात्रा से हुई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। आज नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है।
11: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है।
8: उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील को दोहराया और सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग का उपयोग करने को कहा।
11: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुने, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
8: हरियाणा में आज सुबह हिसार और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचर ने बताया कि आज रात को भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
12: पश्चिमी सूर्यांशी प्रभाव के कारण हरियाणा में विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण हरियाणा में आज बारिश हुई है और आज रात्रि को

0: बारिश की संभावना, और कल 12 मई को भी हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्र में बारिश की संभावना बन रही है। 13 मई को छिटपुट बूंदाबांदी कुछ स्थानों पर होने की संभावना है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ अमृत पर्व आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले, और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों भाई अनिल भाई के राम राम। और भाई मौसम की अगर बात करी जा तो मौसम थोड़ा सा जो जिक्र चल रहा था कि भाई 13 तक ऐसा रहेगा, तो जो भी हमारे खेत कार के काम हैं वो भाई समय पर हम करते रहें। और बाकी भाई देखो बात करें हम जो भाई मंडी में जींस लेके जाओ हैं या कई भाइयों ने भी अपने घर में घेर रखे हैं, बाद में जो थोड़ी सी बिक्री की व्यवस्था करें हैं, तो थोड़ा सा बाज़ार भाव का अगर ध्यान करें तो भाई गेहूँ का भाव 2585 रुपये रोहतक में और 2585 रुपये पानीपत में, 2580 रुपये पे गुड़गांव में और 2600 रुपये फरीदाबाद की मंडी में। और भाई चने की बात करें 6300 भाई अपने रोहतक में बिका, 6500 पानीपत में, 7000 भाई पूरमपट गुड़गांव में और 6600 नरवाड़ा में, 7160 रुपये चना बिका अपना फतेहाबाद की मंडी में। और भाई सरसों की बात आओ तो भाई सरसों 6750 रुपये रोहतक में, 6050 रुपये पानीपत में और 6300 रुपये फरीदाबाद की मंडी में अभी सरसों का भाव। और भी दलहनी फसलों की बात करें तो मूंग भी क्या भाई 9700 रुपये रोहतक में और 9900 रुपये अपने पानीपत में और 9900 रुपये गुड़गांव की मंडी में मूंग का भाव। प्याज का भाव रहा भाई 1300 रुपये प्रति क्विंटल रोहतक में और 1350 रुपये अपने पानी सोनीपत में और 1200 रुपये प्याज भी क्या पानीपत में, 1450 रुपये गुड़गांव में और 1350 रुपये अपने नरवाना की मंडी में, और जो फरीदाबाद की मंडी में है उसमें रहा अभी 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्याज का भाव। और बाकी भी देखो आज शुरुआत तो करेंगे रागनी के साथ में, आज साप्ताहिक समाचार समीक्षा भी जानी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जिक्र करें कि भाई जो भी हम खेत क्यार के काम हैं बुआई के जुताई के, थोड़ा सा मौसम का जो ध्यान करना है वो इसमें बहुत ज़रूरी है। तो भैया ने शुरुआत कर दें रागनी के साथ में, जिसके गायक कलाकार हैं भाई नसीब सिंह कुंडू, और उसके बाद भैया ले चलेंगे आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र और भाई सुनेंगे फिर उसके बाद में साप्ताहिक समाचार समीक्षा।

प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका अमन सैनी। भारत की सांस्कृतिक चेतना में कुछ ऐसे तीर्थ हैं जो केवल पूजा अर्चना के केंद्र नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा के प्रतीक हैं। गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित सोमनाथ मंदिर ऐसा ही एक दिव्य और ऐतिहासिक तीर्थ है। इस वर्ष सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे देश

0: में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व महमूद गजनवी द्वारा 1026 ईस्वी में किए गए हमले के 1000 वर्ष तथा साल 1951 के पुनर्निर्मित मंदिर की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सनातन आस्था, सांस्कृतिक जीवंतता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का विराट उत्सव है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास भारतीय सभ्यता के संघर्ष, धैर्य और पुनर्जागरण की गौरव गाथा है। इतिहास साक्षी है कि इस मंदिर को अनेक बार विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट करने का प्रयास किया। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी और अन्य आक्रांताओं ने इसे तोड़ा, इसकी संपदा को लूटा और भारत की आस्था को कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार यह मंदिर पुनः खड़ा हुआ। इसी कारण सोमनाथ मंदिर आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की अजय चेतना और सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रतीक बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेते हुए इस अवसर को राष्ट्रीय स्वाभिमान का पर्व बताया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर में शिव आराधना की और विशेष पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देश के 11 प्रमुख तीर्थ स्थलों के जल से विशेष कुंभ अभिषेकम किया गया। लगभग 5 फुट ऊंचे पात्र को क्रेन की सहायता से मंदिर के शिखर तक पहुंचाया गया। इस अवसर को और अधिक भव्य बनाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों ने शानदार हवाई करतब दिखाए जिसने उपस्थित श्रद्धालुओं में नया उत्साह भर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि भारत की आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। बार बार मंदिर को तोड़ा गया लेकिन वह हर बार और अधिक शक्ति के साथ खड़ा हो गया। यह भारत की उस विचारधारा का प्रतीक है जो भौतिक शरीर को नश्वर और आत्मा को अविनाशी मानती है। भगवान शिव भारतीय संस्कृति में अनंत शक्ति, सृजन और चेतना के प्रतीक हैं और सोमनाथ उसी सांस्कृतिक ऊर्जा का जीवंत केंद्र है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की आधुनिक शक्ति और सांस्कृतिक चेतना के संबंध को भी स्पष्ट किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। 11 मई 1998 को पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों का नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया था क्योंकि भारत की परंपरा में शिव और शक्ति की आराधना का विशेष महत्व है। भारत के चंद्रयान मिशन में जहां भारतीय रोवर ने चंद्रमा पर उतरकर इतिहास रचा उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। यह नाम केवल वैज्ञानिक उपलब्धि का प्रतीक नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और आधुनिक विज्ञान के समन्वय का संदेश भी देता है। भारत आज विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ते हुए भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ है। हरियाणा सरकार ने भी इस पर्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक तैयारियां की और आज प्रत्येक जिले में कलश यात्राएं निकाली गईं। शिव मंदिरों में जल अभिषेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही भारत की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा पर आधारित समारोह तथा आध्यात्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमनाथ मंदिर से लाइव संबोधन जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में प्रसारित किया गया ताकि अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक आयोजन से जुड़ सकें। लोग भी पूरे उत्साह से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिहोवा के अरुणाई गांव में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरा होने पूरे देश के लिए गर्व का विषय बताया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यह पर्व 11 जनवरी 2026 से आरंभ होकर 11 जनवरी 2027 तक चलेगा। सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ पहुंच रहे हैं और हरियाणा सरकार भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं कर रही है। 8 जून को हरियाणा से विशेष ट्रेन सोमनाथ मंदिर के लिए रवाना होगी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सहायता और सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, भारत की सभ्यता और आस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।
1: आकाशवाणी का यौरत केंद्र और एक बार फिर से भाई सारे बण भाइयों का कृषि युद्ध कार्यक्रम में स्वागत है। भाइयों ने साप्ताहिक समाचार समीक्षा सुनी जो कि भी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करी गई और भाइयों ने भाई ये सुनवा दें पूर्व प्रसारित बातचीत क्योंकि भी धान की नर्सरी का समय आ गया है। किस तरह से हमने कौन कौन सी किस्में लेनी है कि उसमें सावधानी हमने रखनी है इस बारे में पूर्व प्रसारित बातचीत है। डॉक्टर मंगत राम जी चौपाल में आए थे तो सुने भाई ये बातचीत।
2: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक

0: अपने घर। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: भाई आज बातचीत करेंगे धान की उन्नत किस्में और नर्सरी तैयार करना इस बारे में। और इसमें हमने आज आमंत्रित किया है डॉक्टर मंगत राम जी को। आप वैज्ञानिक हैं और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कौल से आप आए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानकारी चाहेंगे कि धान की कौन कौन सी बढ़िया किस्म है जो अपने इस इलाके में सिफारिश करी जाए।
2: जी, वैसे तो धान की बहुत सी किस्में हैं क्योंकि धान पूरे भारतवर्ष में उगाया जाता है, लेकिन हम उन्हीं किस्मों की चर्चा करेंगे जो हमारे हरियाणा प्रांत में के लिए सिफारिश की गई है जिनकी।
1: जी,
2: तो धान की जो किस्में हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो किस्में हैं जो जिसमें परमल धान की किस्में हैं
1: जी,
2: और दूसरी हैं बासमती धान की किस्में। परमल धान की किस्मों में भी दो तीन टाइप की किस्में हैं जो अवधि के हिसाब से।
1: अच्छा।
2: एक तो वो किस्में हैं जिनकी अवधि जो है ना, जिनका कार्यकाल 135 दिन से ऊपर होता है
1: जी।
2: एक दूसरे नंबर पर वो किस्में हैं जिनका 120 121 से लेकर 135 दिन के बीच में जिनका कार्यकाल होता है, और तीसरी होती हैं जिनका कार्यकाल 120 दिन से कम का होता है।
1: अच्छा।
2: तो अगर हम 135 दिन से ऊपर की किस्मों की बात करें तो उनमें कई किस्में हैं, लेकिन जो मुख्य किस्में हैं जो आजकल जिनकी ज़्यादा पॉपुलर हैं वो है HKR 127 और HKR 128।
1: जी,
2: ये जो HKR 127 है ये छोटे कद की किस्म है और इसका चावल जो है ना लंबा और पतला है। 140 दिन में ये पक कर तैयार हो जाती है। और ये जो किस्म है ये इसमें जो हल्दी गांठ रोग जो होता है धान में उसके प्रति ये सहनशील है और इसकी औसत पैदावार 28 क्विंटल प्रति एकड़ है, हालांकि इसकी क्षमता 40 क्विंटल तक की है।
1: अच्छा, यानी कि सही इसका रख रखाव कराया जाए, सारे तरीके अपनाए जाए तो 140 क्विंटल तक पैदावार मिल जाए।
2: बिल्कुल जी
1: जी।
2: दूसरी जो किस्म है इसमें वो है HKR 128।
1: HKR 128 जी,
2: ये पकने तक जो है ना 140 से 142 दिन का समय लेती है
1: जी।
2: इसका तना थोड़ा सख्त होता है इसलिए गिरती नहीं है। चावल इसके भी लंबे और पतले हैं। और ये जो किस्म है सफ़ेद पीठ वाला जो तेला होता है, एक कीड़ा होता है
1: जी,
2: उसके प्रति सहनशील है।
1: अच्छा।
2: इसकी औसत पैदावार 32 क्विंटल प्रति एकड़ है और क्षमता इसकी भी 40 क्विंटल प्रति एकड़ है,
1: यानी कि 32 से लेकर 40 क्विंटल तक की पैदावार भाई ले इसके हैं।
2: जी,
1: अच्छा
2: जी।
1: प्रबंध करें।
2: हाँ।
1: खाद बीज टाइम पे और पानी का ध्यान रखें तो अच्छी पैदावार ले इसके हैं
2: जी। जो दूसरी किस्में हैं जिनको 121 से 135 दिन के बीच में जिनकी अवधि है
1: जी,
2: उनमें जो मुख्य किस्म है वो है HKR 47।
1: HKR
2: 47।
1: अच्छा,
2: ये बड़ी अच्छी किस्म है इस ग्रुप में और इसका भी तना सख्त है और यह गिरती नहीं है। इसके जो दाने हैं वो सुनहरी पीले रंग के होते हैं, बड़े आकर्षक होते हैं।
1: अच्छा।
2: और चावल लंबे और पतले तो हैं ही, और ये 135 दिन तक लेती है
1: जी।
2: और इसके अंदर जो हल्दी गांठ रोग है बहुत ही कम लगता है।
1: अच्छा, यानी जिन इलाकों में ये बीमारी आने की संभावना हो वहाँ भाई इस किस्म की काश्त कर सके।
2: बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जो औसत पैदावार है वो 26 क्विंटल प्रति एकड़ है।
1: पैदावार थोड़ी कम है लेकिन क्योंकि बीमारी से बच जाएगी
2: जी
1: तो वो बराबर पड़ जाएगा
2: जी। जिसकी अवधि कम है उसकी पैदावार थोड़ी सी कम हो जाती है
1: जी।
2: और तीसरा जो ग्रुप मैंने बताया था कम अवधि वाला, यानी 120 दिन से भी जो कम लेती हैं जो किस्में, उनमें जो मुख्य किस्म है वो HKR 48 है।
1: HKR
2: 48 है
1: जी।
2: ये अगेती पकने वाली है और इसके चावल भी लंबे और पतले होते हैं और ये 118 दिन तक ले लेती है,
1: यानी कि लगभग 4 महीने से भी कम का टाइम लेगी है।
2: जी। और जिसकी वजह से इस किस्म के बाद आप तोरिया की फसल ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, बरसीम ले सकते हैं।
1: यानी कि जिन इलाकों में आगे तोरिया है या आलू जिन भाइयों ने आगे लेना होता है वो एक किस्म है वो ले सके हैं। किस्म बताइए आपने, HKR 48
2: जी। और इसकी जो औसत पैदावार है वो 24 क्विंटल प्रति एकड़ है।
1: जी पैदावार थोड़ी कम है, लेकिन क्योंकि अगली फसल है वो
2: जी
1: हम ले सकें, और ख़ास तौर पे अपना जो करनाल कुरुक्षेत्र इसका जो इलाका है जहाँ पर आलू की काश्त करी जा है, तो उन
2: जी
1: भाइयों के लिए बहुत बढ़िया रहेगी।
2: बिल्कुल। और अब आते हैं बासमती धान की किस्मों पे।
1: जी
2: बासमती धान में भी दो प्रकार की किस्में होती हैं बासमती की।
1: जी
2: एक तो वो हैं जो लंबे कद की होती हैं,
1: लंबी बढ़ने वाली हैं।
2: हाँ,
1: जी
2: और दूसरी होती हैं जिनका कद छोटा होता है, उनको बोनी बासमती भी कह सकते हैं।
1: जी
2: जो लंबी बासमती की किस्में हैं, ये इनका जो दाना है लंबा होता है और इसके अंदर सुगंध बहुत अच्छी होती है,
1: खुशबूदार है।
2: खुशबू बहुत अच्छी होती है।
1: जी
2: और इसमें जो सबसे जो लोकप्रिय जो वैरायटी है वो CSR 30 है,
1: CSR 30।
2: 30 है।
1: अच्छा
2: और ये जो लंबे कद की बासमती किस्में हैं, ये प्रकाश अवधि की संवेदी हैं, यानी कि
1: जी
2: अगर दिन की अगर लंबाई दिन का अगर 12 घंटे से कम हो जाए दिन, ये तब जाके ये मतलब निसरती हैं, इनमें बालियां आती हैं।
1: अच्छा
2: चाहे इनको अगेती लगाओ चाहे पछेती लगाओ,
1: जी
2: इनका बालियां निकलने का टाइम लगभग वही होता है
1: अच्छा
2: जब दिन का जो है ना 12 घंटे से कम रह जाए। तो ये इनकी खास बात है लंबे लंबे कद की बासमती की। ये
1: जी
2: CSR 30 की जैसे बात कर रहे थे, इसमें जो बड़ी पॉपुलर वैरायटी है, ये 150 से 155 दिन का समय लेती है। इसके चावल की लंबाई 6.5 से 7 सेंटीमीटर
1: मिलीमीटर
2: मिलीमीटर तक होती है।
1: जी
2: और इसके पकाने और खाने के गुण बहुत अच्छे हैं,
1: जी
2: जैसे त्रावड़ी बासमती के भी अच्छे हैं और इसके भी उसके बराबर हैं। त्रावड़ी बासमती को हमारे यहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी की माना जाता है।
1: जी
2: और ये जो किस्म है CSR 23, इसकी भी क्वालिटी उसी के बराबर है।
1: अच्छा
2: और ये जो किस्म है, ये बदरा रोग के लिए, जिसको ब्लास्ट भी बोलते हैं, पत्ता लपेट, सुंडी के लिए, सफ़ेद पीठ वाला तेला के लिए के प्रति सहनशील है। इसमें ये बीमारियां या कीड़े कम लगते हैं।
1: कम लगते हैं।
2: और इस किस्म की एक खास बात और है कि सामान्य ज़मीन में 14 क्विंटल तक औसत उपज दे देती है,
1: जी
2: लेकिन अगर ज़मीन क्षारीय है,
1: अच्छा
2: यानी जिसकी pH 9 साढ़े 9 के आसपास है,
1: जी
2: उसमें भी ये सफलतापूर्वक हो जाती है। उसमें भी ये 8 से 10 क्विंटल तक पैदावार दे देती है।
1: अच्छा, यानी कि जिन जमीनों में और फसल नहीं हो पाती हैं उसमें भी ये कामयाब है।
2: जी, अब बोनी बासमती की बात करते हैं। बोनी बासमती में कई किस्में हैं।
1: जी
2: हरियाणा बासमती एक है, पूसा बासमती एक है, जिसको मुच्छल भी बोलते हैं,
1: जी
2: लेकिन जो सबसे जो लोकप्रिय वैरायटी है वो पूसा बासमती 1121 है।
1: पूसा बासमती 1121
2: 1121 है,
1: जी
2: ये 145 दिन का लगभग समय लेती है।
1: जी
2: और जो बोनी किस्में हैं, ये प्रकाशावधि संवेदनशील नहीं है,
1: अच्छा
2: यानी कि इनको अगर आप थोड़ा अगेता लगा दोगे तो अगेती पक जाएंगी,
1: जी
2: पछेता लगाओगे तो पछेती पकेंगी। दिन के लंबाई से इनका कोई संबंध नहीं है।

0: इसमें ये जो पूसा बासमती 11-21 की जैसे बात चल रही थी, इसके चावल जो है लगभग 8 मिलीमीटर यानी सबसे
1: अच्छा,
0: लंबे होते
1: सबसे
0: हैं,
1: लंबे
0: आठ
1: आते
0: मिलीमीटर लंबे होते हैं,
1: जी।
0: पतले और सुगंधित भी होते हैं, और उबालने पर अपने आकार से 2.5 गुना तक लंबे हो जाते हैं।
1: 2.5 गुना तक
0: जी,
1: जी।
0: इसकी जो औसत पैदावार है वो 16 क्विंटल प्रति एकड़ है,
1: जी
0: लेकिन इसकी क्षमता 22 क्विंटल तक की है।
1: ठीक।
0: इसके अंदर बोनी बासमती के अंदर एक और किस्म है जो नई आई है एक 2-3 साल से,
1: जी
0: वो है हरियाणा बासमती 2,
1: हरियाणा बासमती नंबर 2।
0: नंबर 2।
1: अच्छा
0: तो ये पूसा बासमती का ही मतलब उसके स्थान ले सकती है,
1: जी,
0: क्योंकि ये भी उतने ही दिन की फसल है, लगभग 145 दिन लेती है, और इसके चावल भी लगभग 8 मिलीमीटर लंबे होते हैं, और पकने
1: बढ़वार।
0: पर वे भी 2 गुना से अधिक लंबे हो जाते हैं। तो
1: अच्छा
0: इसकी क्वालिटी और इसकी जो पैदावार है लगभग पूसा बासमती 11-21 के बराबर है।
1: डॉक्टर साहब, इसमें खुशबू रहेगी?
0: खुशबू वही बिल्कुल उतनी ही है जितनी
1: अच्छा
0: 11-21
1: अच्छा
0: में है,
1: जी
0: और बल्कि इसकी पैदावार थोड़ी सी उससे ज़्यादा है।
1: अच्छा
0: उसकी अगर 16 क्विंटल है तो इसकी 18 क्विंटल है।
1: अच्छा
0: एक चीज़ और है इसमें,
1: जी
0: इसमें जो बकानी रोग आता है, जो
1: जी
0: झंडा रोग आता है, वो काफ़ी कम आता है,
1: जी
0: जबकि 11-21 में कई बार वो ज़्यादा
1: आ
0: आ जाता
1: जाता
0: है।
1: है।
0: तो इस किस्म का
1: तो यानी कि यूं कह सके हैं कि जो 11-21 अपने प्रचलन में है उसका एक सुधराव रूप हम इसने कह सके हैं,
0: जी
1: यानी कि जो कमी उसमें रही है, जो दिक्कत उसमें रही है, उसमें कुछ ना कुछ सुधार होके हरियाणा बासमती नंबर 2 में वो चीज़ें हमने मिल जाएंगी।
0: जी जी बिल्कुल सही। अब हम नर्सरी की बात करते हैं।
1: जी
0: नर्सरी के लिए जो सबसे पहले, जैसे बिजाई का जो समय है, नर्सरी की बिजाई का जो समय है
1: जी
0: वो किस्म के हिसाब से है। अगर परमल धान की किस्म है और 120 दिन से ज़्यादा की जो किस्में हैं,
1: जी
0: वो 15 मई से 30 मई तक उनका नर्सरी बिजाई का समय है,
1: 15 से 20 मई तक,
0: 30 मई तक।
1: 30 मई तक
0: हाँ,
1: जी।
0: और जो कम अवधि वाली परमल किस्में हैं यानी 120 दिन से भी जो कम लेती हैं,
1: जी
0: उनका जो नर्सरी बोने का टाइम है वो काफ़ी लंबा है,
1: जी
0: 15 मई से शुरू होकर 30 जून तक जा सकते हैं,
1: अच्छा, काफ़ी
0: यानी
1: लंबा
0: उनको अगेता भी ले सकते हैं,
1: जी।
0: उनको पछेता भी ले सकते हैं। अगेता लेने का फ़ायदा ये है कि उनके बाद कोई दूसरी फसल भी ली जा सकती है,
1: जी
0: और पछेता लेने का फ़ायदा यह है कि उनसे पहले भी कोई फसल ली
1: फसल
0: जा
1: ली जा
0: सकती
1: सकती
0: है,
1: है,
0: तो इनका ये फ़ायदा है।
1: बिल्कुल। और कई बार डॉक्टर साहब बाढ़ देखनी पड़े है कि बारिश आ जाए तो हम फिर कुछ
0: जी
1: रोपाई वगैरह का काम शुरू करें, या भी पानी की एक आधे की बचत हो जाए, तो
0: हाँ
1: उस लिहाज से भी ठीक है। भाई ये ना हो कि अगेता टाइम था और बारिश हुई नहीं है या
0: जी
1: पानी की कमी होगी तो वो फिर फसल ख़राब नहीं होगी
0: जी
1: अपनी।
0: जी और जो बासमती धान है उसको बोना चाहिए जून के पहले पखवाड़े में।
1: जून के पहले पखवाड़े में
0: हाँ, कोई भी किस्म हो,
1: जी
0: चाहे लंबी हो चाहे बोनी हो,
1: जी
0: दोनों का एक ही टाइम है।
1: डॉक्टर साहब, इसमें एक बात जानना चाहूँगे कि बीज की मात्रा कितनी रहेगी और ये किस्म भाइयों ने आराम से मिल जाए, उपलब्ध हो, वो कौन सी जगह है?
0: जी, वैसे तो इसका जो बीज मात्रा है
1: जी
0: परमल धान के लिए 10 से 12 किलो है, और बासमती धान के लिए 8 किलो प्रति एकड़ बीज चाहिए।
1: अच्छा
0: और ये जो बीज है जैसे हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी मिल जाता है,
1: जी,
0: और जो हरियाणा बीज विकास निगम है वहाँ पे तो मिल ही जाता है,
1: उनकी जो दुकान है
0: उनकी जो दुकानें
1: वहाँ
0: हैं
1: पे मिल
0: उस पे
1: जाएगा
0: काफ़ी मात्रा में मिल जाता है,
1: जी
0: और यूनिवर्सिटी से भी इसका ब्रीडर सीड मिल जाता है।
1: जी
0: तो जो भी बीज ले किसान भाई, वो किसी अच्छी जगह से ले, किसी विश्वस्त स्रोत से बीज ले।
1: हाँ, कई बार डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि भाई कोई जान पहचान का दुकान वाला है और वो भाई अपनी किसी भी कंपनी का, जिसमें कि उसने अपना मुनाफा दिखता हो, उस कंपनी का बीज उठा के दे दे है,
0: जी,
1: तो इस तरह की जो दिक्कत है उससे बचे। और डॉक्टर साहब एक बात और भी है कि उसका अगर पक्की पर्ची ले लें
0: जी हाँ,
1: तो फिर वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आगे
0: जी
1: कोई
0: जी
1: अगर विवाद हो है। और एक बात और भी है कि अगर पक्की पर्ची के लिए हम कहेंगे तो वो जो दुकान वाला है वो भी सही चीज़ देगा।

0: क्योंकि जब
1: जी
0: पर्ची पर देगा कोई चीज तो
1: जी
0: फिर
1: जी
0: उसने भी वो भी एक तरह से नियमों में बंध जाए है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी एंश्योर कर लेनी चाहिए
0: जी जी
1: किसान को।
0: जी
1: तो लेकिन फिर भी बीज कैसा भी अच्छा अच्छा ही लाएगा किसान, सोच समझ के लाएगा। उसके
0: बिल्कुल
1: बाद फिर भी उसका एक बीज का चुनाव होता है,
0: जी
1: एक प्रक्रिया होती है। उसके लिए क्या करते हैं कि 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक घोल लेते हैं।
0: अच्छा
1: इस नमक के घोल में जो बीज लाया है किसान,
0: जी
1: वो उसको उस नमक के पानी में डाल दे।
0: ठीक
1: पूरा बीज एकदम ना डाले, दो दो तीन तीन किलो करके उसमें डालता जाए। जो इसमें हल्के बीज होंगे वो ऊपर तैर
0: तैर
1: तैर
0: के आ
1: जाएंगे,
0: जाएंगे जी
1: और उस उन बीजों को निकाल दें। जो नीचे बैठा हुआ बीज है वो स्वस्थ बीज है,
0: जी
1: उसको रखें।
0: यानी ऊपर जो कीड़ा लगा हुआ है, थोथा है, या कोई
1: जी
0: बीमारी का है, या कोई दूसरी किस्म का बीज है, तो वो भी तैर के ऊपर आ जाएगा, हल्का
1: बिल्कुल
0: होगा तो वो, और उसने निकाल दे, नीचे जो बीज बच जाएगा वो आप मान लें कि भाई ये सही किस्म है,
1: बिल्कुल
0: सही बीज
1: स्वस्थ
0: है,
1: बीज
0: स्वस्थ बीज
1: उसको
0: है।
1: मानेंगे, और उसको निकाल के पानी से धो लेंगे ताकि
0: जी
1: नमक उतर जाए।
0: दो तीन बार अच्छी तरह पानी से निकाल लेता है कि नमक की चास उसमें ना रहे।
1: जी। और
0: जी
1: उसके बाद उसका उपचार भी करना चाहिए,
0: उपचार बता दीजिए डॉक्टर साहब, कौन
1: क्योंकि
0: सा?
1: कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो मतलब बीज के साथ ही आ जाती हैं, बीज जनित होती हैं।
0: जी
1: तो उसके लिए क्या करेंगे, 10 लीटर पानी में 10 ग्राम कार्बन डाइजीम को घोलेंगे, यानी बाविस्टीन को
0: बाविस्टिन को
1: घोलेंगे, और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन।
0: 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन,
1: तो
0: ये
1: इनका घोल बना
0: मात्रा
1: लेंगे,
0: एक एक किलो बीज के लिए है,
1: नहीं ये 10 किलो बीज के
0: दस
1: लिए,
0: किलो बीज के
1: दस
0: लिए
1: किलो बीज के
0: जी।
1: लिए है।
0: यानी कि जिस तरह 18 किलो, 8 किलो या 10 किलो बीज अगर लग रहा है, तो उसके लिए ये
1: हाँ
0: दवाई की
1: काफ़ी
0: मात्रा
1: है
0: काफ़ी रहेगी।
1: बिल्कुल। और इस घोल के अंदर 24 घंटे तक बीज को रखना है।
0: अच्छा
1: ऐसा ना हो कि कहीं किसान भाई जो है 15 घंटे रख लिया,
0: जी,
1: 20 घंटे रख लिया, लेकिन नहीं, पूरे 24 घंटे रखेंगे तभी फायदा मिलेगा।
0: यानी कि आज सुबह अगर भिगोए हैं
1: जी
0: तो उसने पूरे दिन पूरी रात और फिर अगली सुबह तक हमने वो रखना है।
1: जी जी उसके बाद उसको निकाल के
0: जी
1: फिर उसको बोरी पे या फर्श पे रख के उसको उसका जो क्या कहते हैं अंकुरण करवाएं, उसको
0: अच्छा
1: उसके ऊपर पानी छिड़क के,
0: जी,
1: बोरी से ढक के पानी छिड़कते रहें बार बार, 2-3 दिन में उसका अंकुरण हो जाएगा,
0: फुटाव उसमें शुरू हो
1: फुटाव हो
0: जाएगा।
1: जाएगा।
0: तो ये डॉक्टर साहब किसी बंद कमरे में या छायादार जगह पे ये काम करना
1: जी
0: पड़ेगा।
1: छायादार कमरा ज़रूर होना चाहिए, और
0: जी
1: बीच बीच में वो जो ढेर आपने लगाया है उसमें हाथ भी मारते रहना चाहिए, उसको पलटते भी रहना चाहिए,
0: अच्छा
1: कहीं ऐसा ना हो वो ज़्यादा गरी में आ जाए बीज जो है ना,
0: अच्छा
1: तो उसका अंकुरण भी एक सार हो जाए हाथ
0: अच्छा
1: मारने से।
0: जी
1: फिर पौध का जो एरिया है उसको जैसे तैयार करना है,
0: जी
1: उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे पौध बोनी है, जो नर्सरी लगानी है बोनी है, तो उस वो जो स्थान है वो एक तो पानी के साधन के नज़दीक होना चाहिए
0: जी
1: और अच्छी ज़मीन होनी चाहिए, उसमें जल निकास का भी अच्छा प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि कई बार बारिश ज़्यादा आ जाए या बाढ़ आ जाए, पानी भर जाए, तो
0: जी
1: नर्सरी में नुकसान हो सकता है।
0: डॉक्टर
1: तो
0: साहब फिर
1: निकास
0: क्यारी
1: का
0: कैसी बनाओ, नर्सरी ऊंची उठी हुई के समतल के किस तरह की बनाओ?
1: उसके लिए जो सही तरीका है वो है छोटी छोटी क्यारियाँ बनाना,
0: जी
1: यानी कि उसको थोड़ा सा उसके चारों तरफ नालियाँ बना दें,
0: जी
1: वो नालियों की जो मिट्टी है वो थोड़ी उसके ऊपर आ जाएगी,
0: जी
1: एरिया के ऊपर, उससे थोड़ा सा उसका लेवल ऊंचा हो जाएगा।
0: जी
1: तो इस ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसमें पहले गोबर की गली सड़ी खाद डाल दें, जो
0: जी
1: उससे तो नर्सरी थोड़ी सी अच्छी चल जाएगी, और उसको जुताई कर दें 2-3 बार, ताकि वो जो गली सड़ी खाद है वो मिल जाए, मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से उसका समावेश हो जाए।
0: जी
1: और ये काम कम से कम 20-25 दिन पहले करना है बिजाई के,
0: यानी कि अब शुरू कर सके हैं भाई।
1: जी,
0: जी
1: ताकि वो जो खाद डाली है गोबर की वो अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए और उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो पौधे को मिल सके।
0: जी डॉक्टर साहब, इसमें कोई और रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा
1: हाँ
0: पहले?
1: वो भी करेंगे,
0: जी
1: पहले उसमें खेत में पानी भरेंगे, वो जो नर्सरी एरिया है उसमें पानी भरेंगे,
0: जी
1: और उसमें कद्दू भी कर सकते हैं, अगर आपकी ज़मीन हल्की है, रेतीली
0: जी
1: लाइक भूमि है, तो उसमें कद्दू भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा पानी भर लें,
0: जी
1: और सीधा पानी

0: करके उसमें जो है ना उसके अंदर अब रासायनिक खाद डालना है।
1: अच्छा
0: 10 किलो नाइट्रोजन डालनी है, 10 किलो फास्फोरस डालनी है और 10 किलो जिंक सल्फेट डालना है,
1: डॉक्टर साहब, ये शुद्ध मात्रा है।
0: शुद्ध मात्रा।
1: अच्छा, इसको खाद के रूप में देंगे तो
0: खाद के रूप में देंगे तो 25 किलो के लगभग यूरिया हो जाएगा
1: जी
0: और इतना ही DAP हो जाएगा
1: जी
0: और जिंक सल्फेट तो है ही।
1: 10 किलो।
0: ये प्रति एकड़ अगर नर्सरी एरिया है आपका, ये उसकी खुराक है,
1: अच्छा, यानी 1 एकड़ में हमने नर्सरी लगानी है तो उसके लिए ये मात्रा है।
0: उसके लिए ये मात्रा है। अगर
1: जी
0: एरिया कम है तो उसके हिसाब से मात्रा भी
1: कम हो
0: कम
1: जाएगी।
0: कर दें।
1: जी
0: और ये डाल के कद्दू करने के बाद इसको डालना है और फिर सुहागा लगाना है।
1: अच्छा
0: उसके बाद जब ये खड़े पानी के अंदर एक रेती सी उठ जाती है कई बार,
1: जी
0: तो रेती जब बैठ जाए चार
1: जी
0: पाँच घंटे बाद, तब जो वो अंकुरित बीज है
1: जी
0: उस अंकुरित बीज को एक सार पूरे एरिया, पूरे नर्सरी एरिया में छिड़काव कर दें, छिटक दें उसको, मतलब बिखेर दें।
1: जी
0: और उसके बाद आपकी बिजाई कंप्लीट हो जाती है। फिर उसमें जो हर रोज़ पानी लगाएं, शुरू में हल्का हल्का लगाएं क्योंकि पौधे छोटे होते हैं,
1: जी
0: बाद में पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब धूप निकलती है दिन में, बहुत तेज़ धूप होती है, तो उस वक्त उसमें पानी खड़ा ना रहे।
1: अच्छा
0: कोशिश करें कि पानी शाम को लगाएं
1: जी
0: और ताकि सुबह तक उतर जाए, दिन में खड़ा ना रहे। इसके बाद आता है नंबर खरपतवार नियंत्रण का,
1: जी
0: क्योंकि खरपतवार नियंत्रण भी एक बहुत ज़रूरी इसमें मतलब कार्य है।
1: जी
0: क्योंकि अगर खरपतवार नियंत्रण नहीं करेंगे तो कई बार पहचान नहीं हो पाती कि भी ये पौध है या खरपतवार का पौधा है, तो वो
1: जी
0: भी साथ में लग जाते हैं रुपाई के टाइम।
1: जी
0: तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया दवाई है, खरपतवार नाशी है,
1: जी
0: सोफिट के नाम से।
1: सोफिट
0: सोफिट के नाम से
1: जी
0: सोफिट की 600 ग्राम की मात्रा,
1: पाउडर है ये
0: 600, हाँ पाउडर है, 600 ग्राम की मात्रा,
1: जी।
0: और उसको रेत में मिला लें, रेत में मिला के और पूरे उसमें एक सार छिटक दें।
1: रेत कितना किलो है सर?
0: रेत वैसे तो 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से होता है,
1: जी
0: पर जितना भी मतलब सुविधाजनक लगे ताकि एक सरा हो जाए
1: जी
0: तो वो उसमें डाल दें। और ये डालना है बिजाई के एक दिन से लेकर 3 दिन के बीच में,
1: अच्छा, बिजाई करने के
0: अगले दिन से
1: अगले दिन
0: लेकर
1: से लेकर 3 दिन।
0: तीन दिन तक मतलब इसको देना है।
1: जी
0: तो इससे जो है ना खरपतवार का बड़ा अच्छा नियंत्रण हो जाएगा।
1: जी तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताई है कि किस्म है वो भाई बढ़िया लेके आवा अपने इलाके के हिसाब से, अपनी ज़मीन का हिसाब किताब देख के, और पहले भाइयों का जो अनुभव रहा है कि कोई बीमारी उसमें ज़्यादा आती हो या आगे उन्होंने कोई दूसरी फसल लेनी है तो उस हिसाब से अपने बीज का चुनाव करें। बीज है वो भरोसे की जगह, तो लेके आवें बढ़िया किस्म का बीज हो, पक्की पर्ची ले, और उसके बाद में बीज का उपचार करना है वो ज़रूर करें, नहीं तो आगे फिर जाके दिक्कत हो जाएगी।
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने जानकारी दी है भाई, अगर इसी तरह से इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छी पैदावार ले पाएंगे। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर मंगत राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो वही आपने सुनी पूर्व प्रसारित बातचीत विधान की, जो उन्नत किस्म नर्सरी के बारे में, और वही से एक साथ कृषि कार्यक्रम समाप्त, थोड़ी देर बाद 22 मिनट कार्यक्रम ग्रामीण संसार।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र ई बाइसनिंग कार्यक्रम ग्रामीण संसार, और ग्रामीण संसार कार्यक्रम में भाई आज फोन इन कार्यक्रम है चौपाल लाइव, और भाई अन भाई फोन नंबर्स पता है, तीनों नंबर भाई आज अपने चालू हैं, तीनों लाइन भाई फोन कर सके हैं, 255-446, 255-447, 255-448 48 रोहतक का जो एसटीडी कोड है 01262। तो देखते हैं अभी पहला फ़ोन। हेलो हेलो
5: हेलो अनिल भाई, राम राम
2: जी। राम राम जी, नाम बताओ जी अपना।
5: चंद्रगिराम बाबू जी, गाँव
2: जी। चंद्रगिराम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहला फोन आपका लग गया। और बताइए आपका स्वास्थ्य कैसे हैं आप? ठीक ठाक?
5: बढ़िया जी, आपकी दया से,
2: प्रभु की कृपा से। और मौसम मौसम ठीक रहा है कि कई जगह तो राम मरसी हुई है आज?
5: ना, हमारे भी 10 बजे गर्मी बारिश आई थी।
2: अच्छा अच्छा, सवेरे
5: थोड़ी सी आई थी।
2: चलो कोई बात नहीं, मौसम हिसाब बता रखा था। और बताइए चंद्रगिराम जी, अपने कार्यक्रम के बारे में बताइयो।
5: कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहे
2: हैं। अच्छा,
5: 3-4 दिन होगा चंडीगढ़ की 1:10 वाली खबर आऊँ थी ना?
2: हाँ जी बिल्कुल। हाँ बस उसमें कोई देखो, ये तो कार्यक्रम का ऊपर का सौदा है चंद्रग्राम जी, इसके बारे में तो
5: पता। शनिवार से नहीं आ रही, बल्कि शुक्रवार
2: दिन। आज तो दिन में वो बिल्कुल वो आज बल्कि जो 5 मिनट की थी अपना प्रादेशिक समाचार, वो दिन में 2 से 2:30 वाला, 2:30 से 3 वाला कार्यक्रम में 5 मिनट की 2:30 से 3:35 तक गई थी, इस तरह कुछ करके।
5: सर जी मैं ऐसा हूँ, मैं 1989 से रेडियो रखता हूँ।
2: बिल्कुल पता है जी, आपने कई बार बताया है, प्रभु श्रोता है और सारे कार्यक्रम आप बिल्कुल,
5: और सबका प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहे हैं जी, आपकी दुआ है
2: जी,
5: धन्यवाद। में सब राज्य खुशी।
2: चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, चंद्रग्राम जी। अगला फोन देखते हैं जी। हेलो
6: शर्मा जी, राम राम
2: जी। राम राम जी, गिल साहब कैसे हैं
6: जी? बिल्कुल ठीक ठाक।
2: गांव पांडू पिंडारा जिला जींद से श्री बादल सिंह गिल जी।
6: पांडू पिंडारा जिला जींद से।
2: बिल्कुल, बड़ा धार्मिक स्थल आपका और बड़ा ऐतिहासिक है ना?
6: अब तीर्थ
2: खड़े हूँ। हाँ बिल्कुल, चलो मारी भी चलो मारी भी हजरी लागी इस बार ना। और बताइए ठीक ठाक प्रोग्राम के बारे में बताओ।
6: बिल्कुल जी, जैसा कि पिछले बार आपने जो ये पसंद अपनी अपनी में हरियाणी फिल्म गाना सुना था
2: जी, आपकी पसंद
6: आपके इतने दिन में 12:30 बजे
2: जी जी,
6: तो बहुत अच्छा गाना लगे, बहुत बढ़िया प्रोग्राम और पेश किया। आप जो भी बातचीत करते हो बहुत अच्छा लगता है शर्मा जी।
2: चलो गिल साहब, ये तो आपका बड़प्पन है, बाकी सारे कार्यक्रम अच्छे हैं
6: जो आप अच्छे तरीके से आप प्रोग्राम देते हैं ना, बहुत मजा आया।
2: और शनिवार शाम ने भी कोशिश करी थी कि भाई जो आप 4 की जगह 5 जो है ना, पक्का साज भी था।
6: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं तो कहता हूँ आपको तो करने की जरूरत पड़ती नहीं है, मैं ये करो ये करो, आप अपने आप श्रोताओं का ध्यान रखते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद गिल साहब, बहुत बहुत
6: ठीक है शर्मा जी। राम राम।
2: राम राम जी, धन्यवाद जी। और अगला फोन देखते हैं। हेलो
7: हेलो
2: जी
7: जी,
2: हेलो हेलो,
8: नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार जी, सतीश जी
8: ठीक हो जी?
2: अच्छा मटोर जी, राम दिया, बिल्कुल बढ़िया जी, आप बताओ ठीक ठाक हो?
8: ठीक है जी अनिल जी।
2: और अपना प्रोग्राम किसे लागे हमें पानी का कि मैं ठीक ठाक रहा कि मैं था मौसम?
8: सभी कार्यक्रम पसंद है जी अनिल जी, आपने धन्यवाद जी, पहले तो आपने जी मेरी फरमाइश की रागनी सुनवाई थी।
2: चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुनी और इतनी है आपका मन था। और बताइए और बबाकी कार्यक्रम आपने
8: 8 मई को आपने जी 11:46 तक जी सुनवाया जी, कार्यक्रम बहुत पसंद आया जी।
2: चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी, रामदेव जी बहुत बहुत,
8: और सभी पसंद है जी कार्यक्रम जी अनिल जी।
2: हाँ बिल्कुल, आप नियमित श्रोता है और आप अच्छे लग गए जी, रामदेव जी आपको बहुत बहुत बहुत।
8: अभी मैंने फोन में ले लिया जी, बुरा खटारू वाला अड्डा था।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो
8: 2 मिनट में सुनूंगा जी आपके कार्यक्रम जी।
2: ठीक है जी, धन्यवाद जी। अगला फोन देखते हैं। हेलो हेलो
9: हेलो
2: जी,
9: अनिल भाई राम राम, और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को शमशेर द्वारका की तरफ से राम राम।
2: बिल्कुल शमशेर जी, राम राम आपने भी, और बताओ ठीक ठाक हो आप?
9: हाँ बिल्कुल ठीक। 8 मई 1976 को
2: जी
9: पूरी रूप तक केंद्र की शुरुआत है
2: जी जी बिल्कुल,
9: स्वर्ण जयंती 7 साल जरिया प्रोग्राम के कर्जो ठाठे सारे मिलके खुशी मनावा
2: जी,
9: मारा हरियाणा हो खुशहाल और मारा कुनबा बढ़ता जावे, दिन दुनी और रात,
2: दिन दुनी और रात। बिल्कुल समझे जी, बहुत अच्छे विचार है, और आप तो देखो कभी भी हो लिए
9: है
2: ना जी। बिल्कुल समझे जी, सही कहो, और देखो सबका प्रयास ये है कि जो अपना भाई

0: एक संस्कृति है, अपना संस्कृति का जो प्रेरी है आकाशवाणी, और वो इसी तरह से हाँ बाकी माना अभी कुछ जो अपने पुराने कार्यक्रम के भाई फोन आओ फरमाइश आओ वो चीज़ उपलब्ध नहीं है शमशेर जी, बाकी तो कुछ
1: म्यूजिक कुछ एक प्रोग्राम तो अपने थे जैसे रागनी एक किस्से की उस तो समाज के नैतिक मूल्य बने रहा करते,
0: हाँ थोड़ा सा
1: क्योंकि
0: उसमें
1: उनके बीच में जी सुनिए एक मिनट, उनके बीच में ऐसी ऐसी बात आती थी, महाभारत से वेद से पुराण से गीता से रामायण से लोगों के संस्कार भी बन जाते थे, तो ऐसे प्रोग्राम शुरू हो जाने चाहिए जी, और शरण जन के साथ डाले हाजी एक प्रसारण की जो मेरी को नहीं एक श्रोताओं की है, पहले हमारा के अंदर पाकिस्तान तक सुनता था
0: हाँ बिल्कुल
1: और अब मैं दवार का हूँ जी, हम तो पाकिस्तान के अफगानिस्तान में हो गए जी, मैं नहीं कौन सुना दाम से स्पष्ट है।
0: हाँ देखो टावर संबंधी तो बड़ी
1: हाँ वही दिक्कत
0: एक
1: सही, जब
0: बहुत
1: तक प्रस्तुत करने वाले की आवाज श्रोता तक नहीं पहुंचेगी बताओ के प्रतिक्रिया देगा के मजा लेगा मुझे,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिन बेरे
1: एक
0: लेको
1: तकनीकी स्टाफ से हाथ जोड़कर विनती है कृपा इस और ध्यान दे, पिछले साल 24 अप्रैल में सर जी बढ़िया चल जा करता, और
0: देखो
1: जब इसके अधिकारी घोषणा हुई उसके बाद तो बेड़ा गर्क हो गया जी, मारा तो
0: शमशेर जी
1: परेशान कर
0: इस
1: दिया।
0: बारे में पहले भी फोन आए थे और हमारे बहुत दुख है कि जो हमारे श्रोता हैं हम वंचित रह जाए हैं और उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाती और जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से कई बार बाधित हो जाए हैं, तो इस बारे में अधिकारी जी से बात करी थी और ये सुझाव नोट करवाया था कि जिस पर मेन फोकस कराया जाए कि अपने कार्यक्रम सारे
1: और जी के कृष्णा जी महाराज खुद का केंद्र है धरना जहाँ बैठा तो बुंडे लग गया जी,
0: बिल्कुल तो
1: बहुत बहुत शुक्रिया नीर जी,
0: जी
1: थोड़ा हाल विशेष कर जो उच्च अधिकारी सुने हैं वो कृपया हमारे तरफ ध्यान दें, क्योंकि अपना परिवार है जी
0: बिल्कुल बिल्कुल शमशेर जी
1: और लगाव है स्नेह है जी, लगातार बचपन से सुनते आ रहे हैं जी आप तो,
0: बिल्कुल बिल्कुल शमशेर
1: विषय की वजह से जो कुछ बोलना चलना उठना बैठना खेती बाड़ी पशुपालन सब कुछ हरियाणा की उन्नति में खुशहाली में
0: बिल्कुल
1: आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है।
0: बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान है शमशेर जी, और देखो जो आपने सुझाव बताया एक बार फिर से इस पे थोड़ा सा अधिकारी आती हुई बात पूछावांगे, जो टावर संबंधी है रेंज
1: बहुत
0: संबंधी
1: बहुत
0: दिक्कत,
1: धन्यवाद अनिल
0: धन्यवाद
1: भाई आपको भी
0: जी
1: सारे श्रोताओं को भी भाई शमशेर भाई की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम
0: जी राम राम जी शमशेर जी, अगला
1: राम राम।
0: राम जी अगला फोन देखते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, लगता है संपर्क नहीं हो पाया, अगला फोन। हेलो
2: हेलो
0: हेलो
2: अनिल भाजी को नमस्कार,
0: जी नमस्कार जी, प्रकाश जी अम्बावता
2: राम
0: बागवत से,
2: बागवत से मैं मेजरगढ़ से प्रकाश अम्बावता बोल रहा हूँ सर
0: बिल्कुल जी बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी का,
2: जी।
0: और बताइए प्रकाश जी कैसे हैं आप।
2: और सर क्या बताएं, मतलब आकाशवाणी जो है ना कितना बढ़िया इसका प्रोग्राम है, सुनते थे पहले से आ रहे हैं ना, तो सर माहौल ऐसा हो रहा है कि दशा की दिशा भी बदल जाएगी शायद,
0: मतलब कार्यक्रम के बारे में कुछ या प्रसारण के बारे में प्रकाश जी।
2: कार्यक्रम में सर देखो प्रसारण में तो कमी आ रही है आ भी रही उसका तो ये तो बड़ा काम है, चलो धीरे धीरे होता रहेगा इसकी हम लोग
0: जी
2: कोई और नहीं है,
0: जी जी
2: लेकिन सर तीन फोनिंग लाइन है
0: जी
2: आज भी आने बंद रहे सर, 1.5 महीने में मेरा फोन लग गया, फोन आवाज आपकी आ रही मेरी आपके पास नहीं जा रही, कम से कम ये फोन तो ठीक करवा लो
0: प्रकाश जी, आज तो तीनों नंबर अपने चालू हैं 40 47 48, बाकी छियालीस
2: सर
0: में
2: बहुत गड़बड़ हो रही है, मैं तो 1.5 महीने में मेरा कॉल जा रहा है उठ रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही, ये मतलब
0: हाँ
2: फोनिंग कार्यक्रम का तो थोड़ा सर ज्ञान करवाओ थोड़ा,
0: बिल्कुल कई बार ऐसा हुआ है कि आज भी एक दो फोन ऐसे आए हैं कि मैं उन तक आवाज़ शायद नहीं पहुंच पाई या उनकी भी नहीं आ पाई, और प्रकाश जी बिल्कुल आपका सुझाव नोट कर लिया है, जो अपना तकनीकी सहायक है ना उनसे
2: हाँ
0: बात जरूर भी इस बारे में कहा
2: नहीं
0: जाएगा
2: सर ये
0: जी।
2: फोन लाइन तो बड़ा काम को नहीं ना ठीक तो ये रखें तो थोड़ा सा श्रोता भी बड़े आधे श्रोताओं का तो मन मर रहा है जुड़े नहीं रहे श्रोता क्या करे बताओ,
0: हाँ बिल्कुल इतना प्रयास करें, आपने बताया आपका भी 1.5 से 2 बिना फोन भी लगे, भाई
2: हाँ
0: नहीं
2: तो
0: लगे तो एक अलग बात है बिजी होने का कारण, लेकिन आपके लगे फिर भी आपका जो है
2: हाँ सर यही विनती है सर इन लाइनों को फोन लाइन तो कम से कम चालू रखना चाहिए सर श्रोताओं के लिए कम से
0: जी
2: कम,
0: प्रकाश जी जरूर भी तकनीकी सहायक से इस बारे में बात सुझाव
2: जी
0: जी धन्यवाद प्रकाश जी,
2: धन्यवाद।
0: अगला फोन। हेलो
3: हेलो
0: जी
3: आकाशवाणी रोहतक है क्या ये
0: जी आकाशवाणी जो रोहतक जी, नाम बताइए अपना।
3: मैं जी के का मास्टर सुंदरपाल कौशिक बूढ़ा श्रोता काल पर सुख ले बूढ़ा क्यों क्या करे बताओ ये को आपकी बात
0: जी,
3: है
0: मास्टर नमस्कार, आप तो देखो एक बोनू का आग्रह मिला धर्म की जोत सदा ले, ये ना
3: और
0: आपके तो जो विचार हैं और जो प्रेरणा है तो हम भी इस चीज से तो बुढ़ा के आप तो हमारे लिए तो सदा
3: ना भाई मैं एक समय तो एग्रीकल्चर जो किसी के वो अपना तो फराक रखे खेत खलियान
0: खेत
3: है
0: खलियान जी बिल्कुल
3: उसमें गजब की जो

0: आप जानकार देते हो शिक्षा पर, जमींदार इसका नाम दे दो, जमींदार खातर है, नाम बता दो इसका।
1: जमींदार देखो खेत खलिहान भी जमींदार खातर है अपना एक कार्यक्रम है। बाकी एक चीज थोड़ा सा कहीं भाइयन बताया भी था, अभी थोड़ा सा फोकस प्राकृतिक खेती पर करा जाए, उस पर भी कोई भी कार्यक्रम है कोई भी विषय है तो थोड़ा सा प्राकृतिक खेती पर भी मर्सी जिक्र करा जाए। और प्रोग्राम बताओ अपने रागनी भजन किसे आपने।
0: रागनी तो वो सत्ते पर होनी है जिया गति बोले मेरा ना छोरी हो गाड़ी कित ले जाओ जी।
1: हाँ
0: मर्सी
1: ना मर्सी फिलहाल तो उपलब्ध नहीं हो पाई है, एक और भी एक अपना बेंजे की थी फरमाइश तो फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पाई है, और जो बाकी अवेलेबल हैं वो तो अपना ब्रॉडकास्ट करी जाए।
0: हाँ वो तो फिर नू से भाई साहब का भी भाई लक्ष्मी की रागनी तो सुन लिया करे मास्टर सब्जी की
1: जी,
0: पर उसी के डेरे में कदे तेरा मेरा मेल हुआ था जिन्हें मैं सुना दिया करो यार।
1: ये तो मास्टर पीछे सुनाई थी एक ये पीछे सुनाई थी
0: ना
1: ना, अब देखो ये पीछे सुनाई थी जल्द नजदीक के आपने शायद सुन नहीं पाए, वो कनम ऋषि के डेरे में मेरा तेरा मेल हुआ था भूल गए हो तो, ये बिल्कुल नजदीक के अपने पीछे सुनाई थी भूतकाल में। चलो फिर आगे जी जी मर्सी धन्यवाद जी, अगला फोन देखते हैं जी। राम राम जी, अगला फोन हेलो, लगता है संपर्क नहीं हो पाया। अगला फोन हेलो हेलो,
2: राम राम जी, अनिल भाई जी,
1: जी राम राम जी,
2: राजेंद्र बोल रहे जी, थार शरीर
1: जी। राजेंद्र जी कैसे हैं आप, ठीक ठाक?
2: हाँ जी बढ़िया है जी, और आज शमशेर जी द्वारका वाले काफी दिन के बाद फोन मिला है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल जी अच्छे, और देखो ये सारा प्रेम का और अपना उसका है जी सारा के भाई कोई भी समस्या है ना प्रोग्राम संबंधी या टावर संबंधी, और जिस चीज की इच्छा है जिस चीज तब उड़ रहे हैं वो उड़ती नहीं पहुंच पाओ तो थोड़ा सा मन में बने है ना।
2: और शर्मा जी आपने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, दो तीन महीने पहले मैंने एक रागनी की फरमाइश करी थी
1: जी,
2: आपने वो सुना दी, निर्दोष आदमी को दोष लगाना नहीं चाहिए,
1: बिल्कुल
2: जाखा धरती पे बैल बगाना नहीं चाहिए। तो यह रागनी आपने राजकुमार पति की आवाज में सुनाई थी,
1: बिल्कुल जी बिल्कुल,
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसमें
1: जी।
2: और एक दिन भाई जी आपने 7 महीने भी एक वो प्रोग्राम दिया था तो उसमें ये स्थापना दिवस के बारे में बताई थी, और 7 बजे दिया था, दूसरे दिन 8 मई को भी आपने 9:30 बजे, तो कार्यक्रम तो अच्छा था लेकिन छोटा भाई हूँ के भी थोड़ा वो शांत लग जाता तो और भी बढ़िया हो जाता।
1: चलो आगे ये तो है फिर और भी जाएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखो भी श्रोता है सारे अपना जो है केंद्र और सारे है ना आपके
2: कार्यक्रम में, और थोड़ा सा जी और सुनने में अच्छा लगता है श्रोता भाइयों की भी
1: जी, कोई बात नहीं जी,
2: बात थी,
1: और अगली बार जब भी होगा ना तो श्रोता जरूर भी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में,
2: या थोड़ी सी कमी महसूस हुई बाकी कार्यक्रम थोड़ा,
1: चलो जी कमी आगे कर देंगे पूरी है ना।
2: राम राम
1: राम राम जी, अगला फोन जी हेलो,
3: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार जी,
3: सुरेंद्र सांगवान जी, गांव बिरोली जिला जींद जी।
1: जी सुरेंद्र जी कैसे हो आप सांगवान साहब?
3: बिल्कुल बढ़िया जी, आप सुनाओ?
1: बस बिल्कुल बढ़िया ठीक ठाक, आकाशवाणी परिवार सारा बिल्कुल ओके, आप बताओ अपना कार्यक्रम है जो किसे लगा?
3: कार्यक्रम बिल्कुल बढ़िया लगा जी, सारे खेतीबाड़ी के बारे में बताओ डॉक्टर, हाँ बढ़िया सुनाओ जी, पशुओं बारे में 100 करवाना फोनिंग वाला बढ़िया प्रोग्राम है जी, वो भी
1: बिल्कुल
3: सारी पसंद में बढ़िया करो जी प्रोग्राम।
1: चलो अपने पर सारे अच्छे लगे हैं, थारी पसंद भी अपनी पसंद
3: आपकी पसंद भी जी, हरियाणवी फिल्म का गाना सुना जाएगा था मैं बीच को।
1: हाँ बिल्कुल जी सुनाते रहे और भाइयों की फरमाइश रहे, आगे भी इस चीज पे ध्यान रखा जाएगा जी। जी धन्यवाद जी,
3: थोड़ा नाम को नहीं आता जी,
1: नाम अपना एक बार थोड़ा सा बता देते आप थोड़ा सा चिट्ठी और भी गौर तो आगे नाम आपका
3: गेरा जी, चिट्ठी तो
1: गेर रखी है, चलो एक बार थोड़ा सा और क्योंकि कई बार के वो 20-20-30 चिट्ठी एक के नाम था जहाँ स्टाफ की कमी होते हुए थोड़ा सा छटाई का पहले तो सारी व्यवस्था ठीक ठाक होया करती तो उसमें कई बार रह जाए दब भी जा चिट्ठी कई बार ऐसा भी हो जाए ना
3: जी, हाँ
1: तो जरूर भी देखेंगे जी।
3: ठीक है जी, ठीक
1: जी धन्यवाद जी, जी अगला फोन हेलो हेलो हेलो हेलो
4: हेलो
1: जी नमस्कार जी,

0: नमस्कार जी।
1: नाम बताओ जी अपना।
0: नाम मेरा रत्नी है जी।
1: जी रत्नी जी, और बताओ ठीक ठाक हैं आप?
0: ठीक ठाक है जी, आप भी ठीक हो ना?
1: हाँ बिल्कुल जी, सब ठीक ठाक है। हाँ बिल्कुल, डानी सुरजन से। और बहनी बहनी सुरजन जी,
0: बहनी नारी है।
1: अच्छा अच्छा, आस पास में है दोनों, इकट्ठे बोले जा है।
0: हाँ
1: जी, और बताओ अपने प्रोग्राम के बारे में।
0: तो प्रोग्राम तो ठीक है जी, नू थे ये
1: सारी जानी चोर किससे कहा रागनी, आज दिन में दिन में आपने कार्यक्रम सुना हो गया, एक पक्के साज की भी थी, गढ़वा बहन जी
0: पल्ली शर्मा भी वो गायन जा है, ये बुढ़वा सुनिया भी ये गायन जा है।
1: अच्छा, तो बस
0: आपका सरोवर नीर के की
1: सरोवर ना सरोवर नीर की भी अपना इसकी पाले राम दैया की आवाज में कई बार सुनाई जा है, और दिन में भी दो अलग अलग रागनी थी, अपना गढ़वे बैंजू की भी थी, पक्का साज की भी थी,
0: तो फराड़ी मन नहीं सुन
1: नहीं सुन पाए, कृषि जगत में से आपने सुनी हो तो है ना, तो कृषि जगत में भी अपना
0: तो फराड़ी नहीं सुन सकती।
1: चलो बाकी आपका ओके भाई, ज्यादा जानी चोर के किस्से की बजाय और भी अपना जो सरोवर नीर आपने बताया दूसरे
0: इसकी है, नरसिंह भगत की है और नंदी की है
1: जी।
0: नहीं
1: आप 8:30 वाला कार्यक्रम नहीं सुनते लोक संगीत वाला सुबह, उसमें
0: हाँ
1: तो देखो उसमें भी अपना अलग अलग जो कलाकार हैं हर रोज
0: ये भी वो सारी उससे ना सुनाई थी जानी चोर की, ये
1: अलग अलग कलाकार हैं, बाकी सूत बैठ जाए कई बार, तो बाकी चलो इस विषय में ध्यान रखा जाएगा। ना आगे आपने इस दिक्कत ना होगी,
0: फोन उठा लिया करो मिलता
1: ना, फोन उठा लिया देखो आपसे बात होने लग रही है, है ना?
0: एक पता बगा के मारा फोन नहीं बोला, मारा नहीं खान दे और
1: जा। अच्छा ना ना, देखो जी तो देखता नहीं किसी का नंबर, चलो आज आपका लग गया और आपकी जो फरमाइश है उस पर ध्यान करा जाएगा, धन्यवाद जी। अगला फोन, हेलो।
2: राम राम
1: जी। जी राम राम जी,
2: रमेश बोलूंगा जी, गाँव कलोई
1: से। रमेश जी गाँव कलोई से, हाँ जी रमेश जी, स्वागत है जी आपका कार्यक्रम में।
2: हाँ जी, कार्यक्रम आपके बहुत बढ़िया लग गए सारे जी, जानकारी
1: जी, धन्यवाद जी बहुत बहुत।
2: हाँ जी, एक दो बात कहना चाहूँ जी।
1: बिल्कुल कहो जी, स्वागत है आपका।
2: शुक्रिया, एक जो जैसे सारी चिट्ठी मारेगी
1: रविवार वाला
2: जो, हाँ जी अरे कि ये आप पसंद आप अपनी आपकी पसंद ये वह राजनी वह कलाकार काफी मतलब 2 साल से सुनते हरियाणा कलाकार तो बहुत नाचते।
1: देखो जी बिल्कुल कलाकार हैं, कुछ बार जो देखो कई बार बताया है कि जो पुरानी सीडी हुआ करती ना अपने बहुत सारी सी रागनी थी, कुएं पर लुगाइयां दो काम के फकीर का और इस तरह की जो थी ना अपने बेहतरीन, तो चकुआ चकुवी सुने बोलते कुछ है ना पुराने कलाकार की, तो वो
2: 2007 से लेकर 2011 ऐसे कलाकार आए थे जो ऐसी बढ़िया गायकी गा जा रहे।
1: तो इसके लिए तो देखो जी ऐसा है कि अपने जो ऑडिशन पास है ना, जो अप्रूव्ड कलाकार है अपना आकाशवाणी के
2: अप्रूव्ड है
1: ना, तो उस टाइम की गायकी जो उपलब्ध होने जी, वो तो अपने बाबू राम दैया की भी है कुछ पुरानी, कुछ भगवान पुरिये की भी है लेकिन ज्यादा तो नहीं है, मार सतवीर सिंह बैंसवालिया की भी है।
2: 2004
1: अच्छा अच्छा, ये आपने थोड़ी सी दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं, इस बारे में भी ध्यान कराया जाएगा और कुछ पुरानी जो रचना है।
2: अरगुन नदी खसे जैसे एक दो कलाकार का वैसे नाम तो कम नहीं लगता मैं, लेकिन बढ़िया खसे गा रखे
1: हैं। ना आप कोई बात नहीं, आपने जो कलाकार अच्छा लगे उसका नाम बता सको, इसके लिए आप
2: आकाशवाणी में जो पास होगा सारे बढ़िया
1: है। हाँ नहीं, जो आकाशवाणी में है कोई आपने ऐसा लगा भी ये रागनी पीछे कुछ बात जी थी 2 साल पहले इस तरह,
2: नवल दे का खिस्सा है जी,
1: नवल दे का।
2: हाँ जी राम फड़को करके साड़िया ने गा रखा है जी।
1: हाँ तो आपने बता दिया नाम, तो
2: हाँ जी एक प्रभात भोज का खिस्सा है,
1: ये कौन तो कलाकार
2: की गायकी है, गायक रमेश कुमार सैनी और साथी
1: रमेश सैनी, किस्सा कौन सा बताया आपने?
2: प्रभात भगत की,
1: प्रहलाद भगत का जी।
2: हाँ ये इन दोनों आएगी दो, एक का दो एक पवन कुमार भी पवन कुमार शर्मा अगर 2008-11 में सुन,
1: कोई बात नहीं, ये कलाकार आपके तीनों नोट कर लिए हैं, जो सर के भी उपलब्ध होगी ना तो जल्दी सुनवाओगे जी आपने। धन्यवाद जी, अगला फोन, हेलो
3: भाई साहब। राम राम
1: जी। राम राम जी,
3: और कैसे हो?
1: बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप बताइए आप कैसे हैं?
3: बहुत बढ़िया है भगवान की दया से, मैं सतवीर बोल रहा हूँ गाँव सुनारिया
1: जी। सतवीर जी बहुत बहुत स्वागत है सतवीर जी का अपना सोपाल लाइव कार्यक्रम में जी।

0: और
1: प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगे हैं जी।
0: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सतबीर जी।
1: हाँ जी, एक रागनी काफी दिन से फरमाइश थी, रमेश कलावड़िया गाई हुई है वो।
0: अच्छा,
1: दामा डोल जमाने ने दिया खोल नरनारा की, ऊंच नीच का ख्याल रहा ना बाजड़ पिटकी सारे की।
0: बिल्कुल, राग ने बहुत बढ़िया जी, लेकिन ये अपना आकाशवाणी में तो उपलब्ध नहीं है राग इसकी लौड़िया की।
1: चलो ठीक है जी, देख लियो।
0: धन्यवाद भाई, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। अगला फोन। हेलो, हेलो जी, लगता है अभी संपर्क नहीं हो पाया। अगला फोन जी।
2: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी,
2: गंगा सिंह राम राय पूर्व जिला परिषद बोल रहे हैं
0: जी। और बताइए जी,
2: परिवार ठीक है जी?
0: हाँ बिल्कुल ठीक है प्रधान जी, आप बताओ ठीक ठाक सब?
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कल शाम आना था जी, दूसरे एक बार में।
0: अच्छा,
2: वो ना दिया आपने कि
0: वो देखो जी, अपना कुछ दिल्ली के जो कार्यक्रम है उनकी वजह से कुछ अपने कार्यक्रम बाधित हो जाए, बाकी तो भाई जो
2: कई
0: टल दिए बस ये थोड़ा सा कार्यक्रम की रूपरेखा ना पीछे तो जो बन के आओ ना, अपना उड़ के जो कार्यक्रम है, जो मेजर कार्यक्रम है, वो ब्रॉडकास्ट कई बार हुआ है। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई ये कार्यक्रम को भाई सांग वाला बंद कर दिया गया हो या कोई इस तरह की समस्या हो, नज़दीक भविष्य में जिस तरह अपने सुचारू रूप से चलने का सिस्टम, उड़ के कार्यक्रम नहीं आऊंगे तो जल्दी अपने सांग सुनवाई जाए।
2: एक वो ओम प्रकाश गागरा जी, सुभाष चंद्र बोस की राग नहीं,
0: ओम प्रकाश।
2: हाँ जी, वो गलत है जिसमें एक तो छाप से विवादित राग नहीं है वो।
0: चलो उस
2: पर
0: गराए मानस के सिर ने काटे ना करते।
2: हाँ जी, वो महाशय दयाचंद जी की भी सुना काफी, फिर एक उसमें एक कली में महर्षि जी के लिए वो थोड़ा आप से।
0: चलो कोई बात नहीं, इस तरह की जो राग नहीं है ना आपने बताया
2: तो ना ही सुना वो तो बढ़िया
0: ना। बिल्कुल, आपका सुझाव नोट कर लिया है और ठीक है ना।
2: लेको घनखरे भाई कहें जो पुराने कलाकार थे अपने,
0: कलाकार आपने बताया ओम प्रकाश,
2: ओम प्रकाश नाम से जी।
0: ठीक है जी, बिल्कुल जी।
2: अरे जो पुराने कलाकार थे नहीं जी, उनकी बहुत गजब रागनी आ कर दी, जिस तरह गुलाब सिंह होया करता है बड़ा
0: ना। देखो एक तो गुलाब सिंह खांडवाल है, हाँ एक बिल्कुल एक गुलाब सिंह और थे। चलो गुलाब सिंह की तो आपने नजदीक भविष्य में सुना भी देंगे प्रधान जी,
2: ये तो रोज सुना जी गुलाब सिंह खांडवाल की।
0: ना ना कोई बात नहीं, उन गुलाब सिंह की भी रागनी है अपने पास, सुना।
2: एक बदलाव करो शर्मा जी, एक कलाकार पुरानी रागनी काफी रिपीट हुए हैं, कुछ थोड़ा जो पुरानी कोशिश करो जी। मैं तो बहुत जो पहले सुनिया करते, जो कर एक इस भाई ने भी कहा था ना 2011 के बाद वो अति रागनी आ करते जी, बड़े रामकृष्ण व्यास जी की थी एक इनका।
0: देखो जी वो तो जो अपना बड़ली मशीन वाला तावे वाला सिस्टम और चकली वाला सौदा उसका था जी। हाँ। और वो ही तकनीक के अपने
2: एक बद्दी बलराज व्यास जी का दे रामकृष्ण व्यास जी की, वो भी कई साल हो गए जी आई नहीं रागनी।
0: बस वो इसी कारण से नहीं है, वो सीडी तो बड़ी रखी है लेकिन उनका जो उपकरण है चलाने का वो फिलहाल।
2: परसों बढ़िया आई थी वो जैनी चोर की, वो था श्यामलाल सांगी,
0: श्यामलाल सांगी की बिल्कुल।
2: हाँ, वो बहुत बढ़िया आई चार राग ने। धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद जी, और आगे भी आपने बताया है इसका ध्यान रखे जी, धन्यवाद जी। अगला फोन। हेलो,
3: धन्यवाद जी, और आगे भी आपने बताया है।
0: हेलो,
4: अनिल भाई जी, राम राम
0: जी। राम राम जी, जी जयवीर जी, और बताओ ठीक ठाक?
4: बिल्कुल ठीक ठाक भाई साहब, आपने सुना?
0: बस बढ़िया, आपका इन तो आज की फुहार सी थी सवेरे।
4: हाँ
0: है ना,
4: कर गया? हाँ बिल्कुल कर गया।
0: कितने ग्रामीण सी का प्रोग्राम बनाया है एक दो जगह।
4: हाँ कर गया,
0: कर गया बिल्कुल। चलो ये तो अपने भाई नुए चल रहे हैं प्रकृति के वो है। और बताओ अपने कार्यक्रम के बारे में बताओ।
4: कार्यक्रम एक नंबर के चार है भैया, संगाल ये
0: संगाली। तो जी देखो प्रधान जी का फोन आ रहा था राम राय से, तो उनको भी ये बताया गया था कि जिस तरह अपना कुछ देखो काम धाम है ना, सारे

0: ठीक ठाक।
1: हाँ जी, बारिश तो थी हल्की फुल्की।
0: हाँ, भिवानी के आसपास में, और
1: हाँ
0: आपके थी
1: जी,
0: पुआरसी सवेरे 7 के आसपास।
1: प्रोग्राम तो बढ़िया चलते हैं सर।
0: जी
1: या ना जी,
0: ना,
1: बारिश
0: बिल्कुल।
1: थी
0: हाँ, अच्छे चलेंगे। और आप जिसे प्रबुद्ध जो रेडियो श्रोता है
1: जनता
0: हमारे,
1: तो जी कामयाब है पश्चिम बंगाल की। थोड़ी
0: चलो ये राजनीति की बातें तो देखो जी, अपने कार्यक्रम संबंधी
1: मोतियाँ भी करनी है सर।
0: सतीश जी का तो कई बार भाई थोड़ा सा गैर बदल लें दूसरा। चलिए अगला फोन देखते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो, अगला फोन। हेलो
1: सर जी नमस्कार।
0: जी, नमस्कार जी।
1: सर विजय सिंह लखेरा बोल रहा हूँ, वीरभूमि खेड़ी तलवाना महेंद्रगढ़ से जी।
0: जी विजय सिंह लखेरा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका कार्यक्रम
1: जी
0: में।
1: थैंक यू।
0: और बताओ, आप ठीक ठाक हैं?
1: हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है
0: चलो
1: सर, कार्यक्रम भी सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, मगर सर बीच में कभी कभी रेडियो रेंज छोड़ जाता है। रेडियो की आवाज है, वॉल्यूम इतना पूरा कर लेते तब भी कानों तक आवाज पहुंचती है
0: मतलब
1: जितनी
0: देखो, पहले
1: मुश्किल से।
0: प्रसारण की अगर बात करें आप, तो दिल्ली का जो प्रसारण था वो थोड़ा सा निमड़ रहा करता, और अपना थोड़ा सा ऊंचा रहा करता आसपास का
1: हाँ जी
0: रोहतक
1: हाँ
0: का।
1: जी
0: ये थोड़ा सा वो ऊंचा टावर की और ये एक रेंज की जो समस्या बन रही है ना टावर के
1: हाँ
0: बाद
1: जी।
0: में, ये थोड़ी सी जी विजय सिंह जी
1: मैं तो कई बार अक्सर मन में सोचता हूँ जी, शायद हो सकता है भाई वहां से वॉल्यूम कम कर रखा हो
0: ना
1: सर
0: ना
1: जी
0: जी,
1: उन्हें।
0: वॉल्यूम का नहीं जी, ये जो अपने पीछे समस्या आई थी ना टावर गिरने की, कई
1: हाँ
0: दिन
1: जी हाँ
0: बाद
1: जी
0: इतना
1: हाँ,
0: था
1: काफी
0: कार्यक्रम।
1: दिनों
0: हाँ
1: से बाद
0: जी,
1: इधर आ
0: उसके
1: गया।
0: बाद थोड़ी सी ये जो एक समस्या है वो बन रही है रेंज संबंधी।
1: और एक हमारे वरिष्ठ श्रोता जुड़े थे जी, शमशेर सिंह जी, उनकी बातों से मेरे को बड़े पसंद आए जी, उनको तहे दिल से धन्यवाद करना
0: बिल्कुल जी,
1: चाहूंगा
0: वो
1: जी।
0: बिल्कुल जो बताया उन्हें दिल से बताया, आकाशवाणी के प्रति आप सबका प्रेम है जी।
1: जी जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी विजय सिंह जी, बहुत बहुत
1: शुक्रिया
0: धन्यवाद
1: सर जी, नमस्ते जी।
0: जी, नमस्कार जी। अगला फोन। हेलो हेलो, लगता है संपर्क नहीं हो पाया। और अगला फोन। हेलो हेलो जी
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी
1: हाँ जी, गांव पथरवा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से आपका नियमित श्रोता राजेश कुमार बात कर रहा हूँ जी।
0: जी राजेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और बिल्कुल आखिर से मैं, आपका फोन भी लग गया, बातचीत आपसे होने लग रही है।
1: हाँ जी हाँ जी
0: और
1: सर,
0: बताइए जी, कैसे हैं आप?
1: अरे फरमा मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सर, आपसे बात हो रही है और भी अच्छा हो गया।
0: चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, कोई फरमाइश आपकी
1: हाँ सर,
0: जी, बताइए।
1: उसमें एक सिलसिला होता था रागनी एक किस्से की।
0: रागनी एक किस्से की, बिल्कुल प्रकाश जी ने भी कहा, और द्वारका से भी शमशेर जी ने बोला है इस विषय में, तो बिल्कुल गए
1: हाँ जी
0: जी,
1: हाँ जी
0: नज़दीक भविष्य में ज़रूर भी जी ये समस्या है ना, जो आपने जो एक मन कर रहा है पुराना है
1: हाँ
0: ना,
1: जी हाँ जी हाँ
0: ज़रूर
1: जी
0: ज़रूर पूरी करी जाएगी जी
1: हाँ जी
0: जी
1: चलो।
0: और जी चलते चलते एक फ़ोन और ले लेते हैं। हेलो
1: नमस्कार जी,
0: जी, नमस्कार जी, नाम बताओ जी अपना, समय कम है
1: रामचंद्र झा बोल रहे।
0: जी। रामचंद्र जी, और बताइए, ठीक ठाक हैं आप?
1: अजी ठीक है सर, अपनी सुनाओ।
0: बस बढ़िया जी, बस प्रोग्राम का सोच लो, नज़दीक के समय
1: सर
0: बिल्कुल।
1: आपको कार्यक्रम सबसे बढ़िया लागे जब हरियाणा पर आगे जरूर सुनवाए को सर।
0: हरियाणवी तो थी वो, आप तो वो करे हो सरदार जी, वो कह बोला भाई गजल होती, गल कुछ और होनी थी, बोला जी ये गजल ही तो है, बोला फिर तो बल्ले बल्ले। तो
1: अजी सर सर एक हाथ जोड़ा से एक राग नहीं हरियाणा में चंद्रावड़ा किस्सा ही जरूर आगे सुनवाए को।
0: चंद्रावल का जो अपना फिल्म है उसे गीत सुनवाए जहाँ कई बार है ना।
1: ये मतलब मंगलवार प्रोग्राम आता है ना 8:30 बजे,
0: हाँ जी
1: 9:30 9:30,
0: जी जी
1: इसमें एक रागन जरूर सुनवाया करो हरियाणा में।
0: जी जी जरूर सुनवाया जाएगा जी। और भाई सबका जिन्होंने फोन किए, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे एक साथ आज का भी ग्रामीण संसार कार्यक्रम समाप्त करने की, अनिल बाई दो इजाजत, सारे बाण भैया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए। हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
2: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियाँ समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
2: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
1: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
2: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जिसका शीर्षक है
2: माई बाईसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
3: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
4: वी आर फाइन सर।
3: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स ऑल वेल?
4: यस सर।
3: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
4: Yes sir, we have seen.
5: I have seen sir.
6: I like bicycle sir.
7: I love it.
3: That's very good.

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसाइकिल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
5: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
6: साहब, आप क्यों परेशान होते हो? हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
5: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
6: वो तो ठीक है।

0: साहब।
1: और अगर मैं इसकी देख रेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
0: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
0: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
2: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
2: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था। पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं AR रहमान, चिन्मय श्रीपदा और साथियों की आवाज़ों में गाए गीत से

जिसे हमने लिया है फिल्म गुरु से। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, धुन तैयार की है ए आर रहमान ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

गुरु फिल्म से आपने सुना एआर रहमान, चिन्मय श्रीपदा और साथियों की आवाज़ों में गीत। गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने, संगीत से सवारा था इस गीत को एआर रहमान ने। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं तुलसी कुमार और आलम खान की आवाज़ों में, एक पहेली लीला फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने और संगीत दिया है उजैर जसवाल ने।

एक पहेली लीला, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने सुना तुलसी कुमार और आलम खान की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे कुमार ने, संगीत दिया था उजैर जसवाल ने। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं विशाल मिश्रा और नीति मोहन की आवाज़ों में, गदर 2 फिल्म से। सईद कादरी के बोल हैं, मिथुन का संगीत है, आवाज़ें हैं विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की।

सईद कादरी का लिखा और मिथुन का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना। विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की आवाज़ों में गदर टू फिल्म से। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ों में लाल सिंह चड्ढा फिल्म से गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के बोलों को संगीत दिया है प्रीतम ने।

अरिजीत सिंह, शिल्पा राव और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं अमृत पाल सिंह, इनकी आवाज़ में गाई गज़लें आपको सुनवाने जा रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, अमृतपाल सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आप सुन रहे हैं अमृतपाल सिंह की गाई गजलें।

0: अमृतपाल सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, इसमें आज आपने अमृतपाल सिंह की गाई गज़लें सुनी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और ठीक 9 होंगे अंग्रेज़ी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में NDA का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का

0: देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत एक अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
7: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
6: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
7: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
6: Sardar Dham Hostel in Vadodara includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls, along with amenities like a central dining hall, library and auditorium. Mr. Modi also visited various facilities at the Sardar Dham complex, including the reception area, civil amenities, dining area and e-library. Earlier in the day, Prime Minister Modi took part in the Somnath Amrit Mahotsav, marking 75 years since the inauguration of the restored temple in Gujarat dedicated to Lord Shiv. Mr. Modi performed Mahapuja followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the celebrations. In a social media post after the visit to the temple, the Prime Minister said, Somnath Temple stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. He said a thousand years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi added, the doors of the newly rebuilt Somnath Temple opened in 1951 in the presence of the then President, Dr. Rajendra Prasad, proclaiming to the world that while the attackers have faded into the dust of history, the soul of Bharat endures. The government today informed that there is no shortage of any petroleum products in the country, and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas and 45 days of LPG. This was informed during the fifth meeting of the informal group of ministers on West Asia, chaired by Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi. The meeting took stock of the latest developments in the conflict and discussed ways to bolster country's readiness to ensure its minimum effect on the people. India is among the few countries where petroleum prices have held steady throughout this period of global volatility, even after more than 70 days since the conflict started. During the meeting, it was informed that the foreign exchange reserves stand at a comfortable $703 billion. The government said the supply management has been good and the people need not panic or resort to overpurchase of fuel and other products. During the meeting, Defence Minister Rajnath Singh directed the officials to take concrete steps to implement Prime Minister Modi's 7-point appeal at the ground level. The meeting was attended by Union Ministers J.P. Nadda, Ashwini Vaishnaw, Hardeep Singh Puri, Kiran Rijiju, K. Ramohan Naidu, Sarbanand Sonowal and Dr. Jitendra Singh. Meanwhile, the centre today said the stock of fertilisers in the country is more than 51% for the Kharif season 2026. Additional Secretary at the Ministry of Chemicals and Fertilisers, Aparna Sharma, stated this while addressing the inter-ministerial briefing on recent developments in West Asia in New Delhi today.
8: For the season of Kharif 2026, the stock is more than 51%. The fertilizer stock is comfortable and the MRP of major fertilizer remains very much the same. The domestic production and import of fertilizer after the crisis period has been

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना कार्यक्रम का ये पहला गीत। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं पारस मनी फिल्म से चुनिंदा गीत। कार्यक्रम में अगला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में।

0: लता मंगेशकर और मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक फिल्म से यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। इसमें आज आपने पारस मणि फिल्म से चुनिंदा गीत सुने। फिल्म के गीत लिखे थे आनंद असद भोपाली और फारूक केसर ने। संगीत से सवारा था उन गीतों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: श्रोताओं, आपके मन में से संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फ़ोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331 0481 2371 7116 2371 7106 और 2331 4444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9289094044 और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले अतुल जी, आपसे सवाल। आज का विषय है जो हमारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता, और जागरूकता सतर्कता होगी तभी सुरक्षा और बचाव होगा
2: जी।
0: तो अग्नि सुरक्षा का क्या अर्थ है

0: अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
1: देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है, करीब करीब जो फायर होती है वो 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक ब्लास्ट, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी एसी ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती है घरों में जो होती है, वो दो तरह से लगती है मेनली। वन इज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पे ध्यान देंगे, तो मुझे ये लगता है कि फायर जो है काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब उसमें करीब करीब 60-70% का लोअर आ जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को, आप ये समझिए, अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट जब चलता है उसमें हीट जनरेट होती है, चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ चलाएं, तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो इस उसमें हीट जनरेट हो रही है, और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है, आप आज या नहीं तो कल जरूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी शुरू
0: हुई मई के महीने में जी,
1: आग लगी और बहुत सारी आग हुई एसी की ब्लास्ट होने के से लगी
0: जी।
1: उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई, बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ, वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा, तो उसमें आग लगने वाली है
0: जी। शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए
2: जी। नमस्कार, मैं राकेश, कोटखाई शिमला, हिमाचल प्रदेश
0: जी।
2: और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है, किस तरह से आग को पाया जा सकता है? क्योंकि हमारे जो कई कई गाँव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं
0: जी,
2: लेकिन फायर पहुंचती नहीं है, तो अग्नि को कैसे, किस तरह से जो है काबू किया जा सकता है, काबू किया जा सकता है?
0: प्रशांत जी, जंगल में आग एक गंभीर समस्या है।
3: नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज़्यादा होता है। और साधारणतः जो हम जंगलों की आग, जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पर आग बुझाते हैं, तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है। तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में, ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब ये है कि जहाँ पे आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पे आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल ना हो, उसको साफ कर देते हैं, सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो। क्योंकि आग को बुझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है, तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पे जले और वहीं पे बुझाए। बाकी आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है तो उसमें एयर लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं, तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है। बट मेरा, हमारा ये है कि आप उसको कन्फाइंड कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइंड करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है
0: जी। राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं जी। राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है।
4: नमस्कार जी, निगम जी को और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-20, 25-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं, तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? मैंने देखा है कि वहां पे 60-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है, तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे एमसीडी है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा, घबराहट में लोग अपनी ज्यादा जान दे देते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। नमस्कार
3: नमस्कार
0: जी। राकेश जी,

0: राजेंद्र जी, आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, एसी हर घर में, हर ऑफिस में लगा होता है। एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं, तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई हैं, वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी और आप कंटिन्यू एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है और कोई भी अगर चीज़ आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है, तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं, बच्चे भी उसी सोते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है। फिर हम क्या होते हैं, दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी। तो हम क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी, वो इस लोड को लेने के काबिल है या नहीं है। अगर हमारा ट्रिप होता है तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है या एसी आवाज़ कर रहा है या बार बार कोई चिंगारी निकल रही, ये संकेत है कि आपकी वायरिंग खराब हो चुकी है, आपका लोड ज़्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज़ कर रहे हो, आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीज़ों पे देना है, ना कि सबके साथ एसी चल रहे हैं उसका ध्यान देना है, क्योंकि एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
1: अतुल जी, ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि एसी अगर हम 2400 घंटे चला रहे हैं, तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की?
0: देखिए, ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत जगह मैंने कहा है कि आप एसी को 2 घंटे चलाइए और आप 10 मिनट के लिए भी बंद करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है उससे। उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। हमारे यहाँ वो क्या रहा है कि हमने एसी सुबह चला दिया, बच्चे उठे, चला दिया, 90 डिग्री कर दिया और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका एसी ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाज़ा खुल बनना, तो 90 डिग्री कभी टेम्परेचर अचीव नहीं होता और एसी कभी कट ऑफ होगा नहीं, तो आग लगने के चांस ज़्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे चलाएं, थोड़ा सा उसको रहते हैं, इवन 5 मिनट देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट एसी होगा, तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
1: रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी, सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है, पहला प्रश्न।
3: हाँ, नमस्कार रमाशंकर वाजपेयी जी, नमस्कार। आपका सवाल जो है, बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जैसे अभी हमारा जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का रखरखाव, आग के लिए बचाव का रखरखाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए हैं कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीज़ों का रखरखाव रखना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए। जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है, उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो आपका लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबिलाइजर्स आते हैं, MCBs आते हैं, RCBs आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है। और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है एसी में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है, तो वो ट्रिप कर देता है। तो ये इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है। बट प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि ये सारी चीज़ें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है, बट उसका रखरखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो मेंटेनेंस जो है उसका बहुत जरूरी है, और जो ऑक्युपायर है, जो हम लोग वहां रहते हैं, उनको ये चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहां पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं।

0: बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, पर आप कहीं भी वहां पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पर लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहां जाके पढ़ा आपने, तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम 2 एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए, और ये है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहां पे सामान रख दिया है या कोई लॉक कर दिया है या सिक्योरिटी रीजन से है। तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकास का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं, DFS, दिल्ली फायर सर्विस, कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉक ड्रिल कंडक्ट करता है। तो मॉक ड्रिल कंडक्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि मॉक ड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर हो रहा है,
1: क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे। हाँ। तो रास्ता साफ होना चाहिए और पैनिक नहीं, सबसे बड़ी।
0: हाँ, लिफ्ट से आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि होती है, दम घुटता है। तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट को यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज करना है।
1: दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
2: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। जैसे कि मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियाँ भी हैं, दुकानें भी हैं। तो मैं आपका ध्यान 2-3 बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है, कहीं एसी में लीकेज हो गई, कहीं कुछ और बात हो गई कहीं। तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियाँ होती हैं, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियाँ होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर बुझती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है MCD की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लगी थी।
1: धर्मवीर जी, सवाल हम समझ गए हैं।
2: सवाल यही कहना चाहूंगा,
1: हम समझ गए हैं। प्रशांत
2: नहीं, लवलीन जी, आप बात पूरी होने दीजिए।
1: नहीं, आप 3 सवाल पूछे जी।
2: नहीं, अगर आपके, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता, फैक्ट्रियों में नहीं होता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
3: धन्यवाद धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में एक हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हजारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड गांधीनगर कई बार गया हूँ, गांधीनगर में हमें पहुँचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15-16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियाँ हैं, गाड़ियाँ पार्क होती हैं रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया
1: जी।
3: तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिल के अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूँगा, ज़्यादा कर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस की लग सकती है, किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहाँ हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहाँ बहुत छोटे छोटे ठेले भी लगे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है।

0: अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं, उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सचर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता, तो उन्होंने उस फायर एक्सचर को ही आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज़्यादा नुकसान हो गया
1: जी।
0: तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं, जो आप लोग के लिए बने, उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिकसिटी की जो बात है, मैं कह रहा हूँ, जहाँ बिजली के प्लग होते हैं वहाँ हम देखते हैं साड़ियाँ भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज़्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, कपड़े में आग लग जाएगी, और आग फिर कपड़े में आग लगती है, बुझती नहीं है, गांठ होती है, आप पानी डालें, ये बहुत 24-24 घंटे लेती है, दो दो दिन लेती है
1: जी।
0: तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है, आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जैसे आपने कहा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ, मैंने देखा कि लगती है, पर बहुत सारी आग को आप लोग खुद बुझा लेते हैं, तो क्योंकि वो दिन में लगी, आप लोग जागरूक थे, आप सचेत थे, आपने तुरंत बुझा ली। पर कई बार क्या होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, मीटर फट गया, आग बड़ी हो गई, तो आप नहीं बुझा पाते। तो अनलेस हम अपना जो प्रिकॉशन लें, हम लोग को, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल रिलैक्स कर दिया, 5 साल बाद दिल्ली फायर सर्विस इंस्पेक्शन करेगी।
1: जी, चीजें फायर ब्रिगेड पहुंचे उतनी देर में अपना। विजय कुमार साहनी है महाराष्ट्र से।
2: स्वामी
1: जी, विजय जी नमस्कार।
2: हाँ,
1: स्वागत है।
2: दीदी नमस्ते।
1: नमस्कार, सवाल।
2: हाँ, सर नमस्कार जी।
3: नमस्कार
2: जी। भाई विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गाँव बस्तवा तहसील सीहोर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से।
3: नमस्कार विजय।
2: हाँ सर जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक इमारत को आग लग गई तो हमें शुरुआत तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह क्या?
3: हाँ, विजय कुमार जी नमस्कार, कोल्हापुर से है आप। तो मैं आपको एक, आपका सवाल है कि अचानक अगर आग लगी तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है, जो लोग आसपास है उनको वहाँ से बाहर निकलना है। पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी, फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है। उसके बाद आपको, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसके बाद जो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहाँ पे आप इमिजिएटली फ़ोन कर दीजिए। और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं, बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है। उसके बाद जितना हो सकते हैं जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए, और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
1: और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बन के खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियां आ जाती हैं, सलाहें बहुत देती, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके।
3: हाँ, ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी की घटनाएं होती है तो वहां पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहां पे काम आएगा। तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहां काम कर ले उनकी सुविधा दें, लोगों को जाने आने का रास्ता दें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको, जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर करना है, जैसे कहा कि आपके जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आपके लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीज़ें, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसके मार्किंग होने चाहिए, आपको कहाँ जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है, या रेडियम मार्किंग लगते हैं, या फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
1: श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
4: नमस्कार।
3: नमस्कार
4: जी, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से
1: जी।
4: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मियों के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो अगर पानी की कमी है आजू बाजू में कोई कोई एरिया में कमी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए कोई दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, समझो पानी की कमी है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाए तो, मतलब
1: जी जी श्रीकांत जी, इन्होंने पानी पूछा, उसी को अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहां दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें?
3: उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक सॉल्वेज का कॉन्सेप्ट

0: इक्विप्ड है। साल्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ पे जो जलने वाली चीज़ है उसके आस पास में जो जलने वाली चीज़ है उसको वहाँ से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं, तो एक तरह से वो साल्वेज का ही तरीका है। तो वहाँ पे जो जलने की चीज़ें जितनी ज़्यादा आप हो सकते हैं उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहाँ से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहाँ फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी। वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट ऐसे वक्त में जलने की चीज़ें आपको दूर करनी चाहिए और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं। जी महेंद्र सिंह जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
2: लवली जी नमस्कार।
1: नमस्कार, सवाल पूछिए।
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
3: नमस्कार
0: नमस्कार।
2: सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से गलती से और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं और उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए?
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्ट किए, दो नंबर हैं आप इनको याद रखें, 101 और 112। आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
1: जी।
3: और 112 पे भी जाएगा अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास रहेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में आग लग भी गई है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप सिलेंडर में अगर आग लग रही है और लीकेज नहीं है तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जाके उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज़। हम लोग कहीं कहते हैं ऑल दो वो क्रूड मेथड है कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला, कोई गीला कपड़ा, तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है और कोई बिजली का सामान, कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी
1: जी।
3: तो उसमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं उस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता है, वो प्लास्टिक के हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर हैं, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं, तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अपने जो जहाँ भी फायर ब्रिगेड मान लीजिए वो 50 किलोमीटर दूर भी है, आप वहाँ चिट्ठी लिखें, वहाँ से कोई ना कोई ज़रूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा। तो आप अपने गांव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे सारी महिलाओं को, एनजीओ को भी यूज़ कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
1: इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया?
3: नहीं, नंबर जो सबका एक ही है 101 ही होता है। आप अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं।
0: मैं एक और चीज, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही है, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूँ कि पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सभी राज्यों को दिया गया है, तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो, और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में, तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
1: RWJ हो या कुछ भी,
0: हाँ कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग अवश्य मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
1: एक सवाल है पानीपत से हैं, ये शैलेंद्र शेंदुर का रहे हैं शायद, ये बोल रहे हैं मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक

0: इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसी स्थिति में क्या कर सके? सीएनजी की भी हम बात करें तो सीएनजी वाहनों में बहुत आग लग रही है।
1: इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफ़ी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है। जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे अगर ऐसी गाड़ी में आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहाँ से निकल जाना है और उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही बुलाना है, क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए, तो वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा। जितना हो सकते आपको दूर अपने आप को करना है और फायर ब्रिगेड को बुला के ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। और उसके उसमें ये है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जहाँ जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जो है कंपनीज अपनी अपनी देती है, उसको भी एक बार आपको समझना जरूरी है।
0: प्रमोद है जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं। जी प्रमोद नमस्कार, स्वागत है।
2: हाँ जी नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो कोई सेंसर वगैरह भी ऐसा है आधुनिक युग में कि जो ऑटो कट हो जाए, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिस वगैरह हैं या मतलब शट डाउन करके वो वहां से निकले, आप प्लीज इसमें बताएं। और टेम्परेचर जो एसी का जो है वो 18 के आसपास रखते हैं, अगर आगे आप टेम्परेचर बताएं।
0: जी हम जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है।
3: जी आपका सवाल बहुत वाजिब है, रात में आग लगती है और सबसे ज्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए इसीलिए ये एमसीबी एलसीबी एलसीबी का जो कंसेप्ट है, इसीलिए अगर ये आपने लगाया है शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा नेचर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी, नंबर वन। नंबर दो, आपने एसी की बात कही, एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है एक दो घंटे बाद उसको बंद करना है।
0: तभी जी प्रशांत जी रुकूंगी क्योंकि समय बहुत दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। और पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है, अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। फिलहाल नमस्कार।
1: नमस्कार।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसमें आपको सुनवाने जा रहे हैं दीपा शर्मा से सितार वादन, राग है श्याम कल्याण।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसमें आज आपने सुना दीपा शर्मा से सितार वादन, राग था श्याम कल्याण। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी सुनने वालों को रीटा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम मन चाहे गीत में आप सबका स्वागत है। पहला गीत आप सबकी पसंद पर सुनवाने जा रहे हैं मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत और नेशु। चकला बाजार सामाना से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल और हसमुख जिंदल। जरूर वरूर महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज। पटेल नगर मलोड पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया। धामनी मानोरा से तुलसी राम डेरे, मायावती डेरे, संदेश, अमूल डेरे, गुलशन डेरे, आदेश, किरण डेरे, प्रज्वल। बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। आप सबकी पसंद पर सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत शारदा और मुकेश की आवाज़ों में अराउंड द वर्ल्ड फिल्म से। हसरत जयपुरी के बोलों को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

अराउंड द वर्ल्ड, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने शारदा और मुकेश की आवाज़ों में सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में हमराज फिल्म से। साहिल लुधियानवी के बोलों को संगीत दिया है रवि ने। पसंदकर्ताओं के नाम गीत के बाद।

साहिर लुधियानवी का लिखा और रवि का संगीत पर किया गीत आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में हमराज फिल्म से। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में हिंदुस्तान की कसम फिल्म से। कैफी आज़मी के बोल हैं, धुन तैयार की है मदन मोहन ने। दोनों गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश आपको बता दें, बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और रामजी आर्य, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, अलीका डब्बाली से बसंत सिंह जन, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी, राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता और रिद्धि गुप्ता, ऐशवान पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखुरी गुप्ता, राजनगर गांधी चौक गांधी निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता,

माधवी साध्वी तन्मय राज और गुनगुन सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान मनु प्रकाश शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत हिंदुस्तान की कसम फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, विमला इंदौरा, गैरी इंदौरा, विकास इंदौरा, प्रियंका, रमन इंदौरा, ऋतु इंदौरा, भविष्य खन्ना, मिसेल खन्ना, किंशु खन्ना और दीपांशी इंदौरा, डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से आप हैं महेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, जितेंद्र शाह और मानसी शाह, नया पारा।

अभिनय से वसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी, ईशर राज सूर्यवंशी, चंद्रकांत प्राची और ट्यूशी सूर्यवंशी। डब्बाली हरियाणा से एक खत आया है, जेके बकलिया, सुनीता बकलिया, संजय, अनिल और मीनू बकलिया का। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गाव्या और सुच्चा पाठक। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, नरेंद्र तनेजा, संदीप गुगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा और किरण ठाकुर। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहाने। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। आप सबने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में चिराग फिल्म से गीत। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, धुन तैयार की है मदन मोहन ने। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत।

चिराग फिल्म से आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में एक नज़र फिल्म से गीत। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहा है आप सबने महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से ये खत आया है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकीब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। दीवाल से शंकर लाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र, ईश्वर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। छत्तीसगढ़ बेमेत्रा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भाव्या सारथी, सुषमा सारथी। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र वर्मा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। कार्यक्रम के अंत में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में एक नज़र फिल्म से ये गीत।

0: इसी गीत के साथ ही मन चाहे गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और ठीक 11:05 पर होंगे अंग्रेज़ी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्रीय को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।